नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को मथानी लेकर पानी की बाल्टी को बिलोते हुए देखा है? वह सुबह से शाम तक पूरी ताकत लगाकर उस पानी को मथ रहा है और इस उम्मीद में बैठा है कि अभी इसमें से ढेर सारा मक्खन और सुगंधित घी निकलेगा। आप ही बताइए, यदि आप ऐसे इंसान को देखेंगे तो क्या कहेंगे? यही ना कि पानी में तो घी का कोई गुण नहीं है, चाहे तुम सदियों तक पानी को मथते रहो, उसमें से घी का एक कतरा भी नहीं निकलने वाला। घी निकलने के लिए दूध और दही चाहिए, पानी नहीं। लेकिन हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ठीक यही नादानी करते हैं। हमारा यह जो मन है, यह 24 घंटे ऐसी ऐसी व्यर्थ की योजनाओं, चिंताओं और इच्छाओं की मथानी चलाता रहता है, जिनका वास्तविकता और कुदरत के नियमों से कोई लेना देना नहीं। हम सोचते हैं कि जैसा हम चाहेंगे पूरी दुनिया वैसे ही चलेगी। कबीर साहब आज हमें इसी व्यर्थ के तनाव से मुक्त करने और उस परम अवस्था को स्वीकारने का सूत्र दे रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह आंखें खोल देने वाला सूत्र। मनह मनोरथ छांडी दे, तेरा कियान होई। पानी माही घिउ निक से, तो रूखा खाई न कोई। मन मनोरथ छांडी दे,

निक से तो रूखा खाए ना कोई रे साधो, तो रूखा खाए ना कोई। श्रोताओं, कबीर साहब मन के व्यर्थ के ताने बाने को तोड़ते हुए कहते हैं, मन मनोरथ छांडी दे। हे मनुष्य, तू अपने इस मनह यानी मन के इन अंतहीन मनोरथ यानी काल्पनिक इच्छाओं, चिंताओं और व्यर्थ की योजनाओं के जाल को तोड़ दे, छोड़ दे, इनसे मुक्त हो जा। तेरा किया न होई, क्योंकि केवल तेरा किया यानी तेरे अहंकार और तेरे अकेले चाहने से यह विशाल सृष्टि नहीं चलती। यहाँ जो कुछ भी घटित होता है वह उस परमात्मा के परम विधान और प्रारब्ध के अनुसार होता है। इस प्राकृतिक नियम को अगली पंक्ति में कबीर एक अत्यंत जीवंत उदाहरण देकर समझाते हैं, पानी माही घिव निकसे। यदि किसी के केवल चाहने भर से या असंभव प्रयास से पानी माही यानी पानी को मथने से घिव यानी घिव घी निकलना संभव होता तो रूखा खाए न कोई, तो फिर इस संसार में कोई भी इंसान रूखा यानी सूखी रोटी क्यों खाता? हर कोई पानी बिलोकर अपनी रोटी पर घी चुपड़ लेता। लेकिन कुदरत का यह अटल नियम है, दूध मथने से ही घी निकलता है, पानी से नहीं। ठीक उसी तरह केवल मन के घोड़े दौड़ाने से जीवन की हकीकत नहीं बदलती। यह दोहा अहंकार, अहंकार त्याग और शरणागति का महान सिद्धांत है। भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति अपने नियमों से काम करती हैं, मनुष्य केवल व्यर्थ में खुद को कर्ता मानकर दुखी होता रहता है। मनोरथ हमारे वे मानसिक भ्रम हैं जहां हम सोचते हैं कि हम पूरे विश्व को, पूरे भविष्य को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकते हैं। कबीर यहाँ यह नहीं कह रहे हैं कि आप कर्म करना छोड़ दें, वे कह रहे हैं कि कर्म करते हुए भी फल और परिस्थितियों को नियंत्रित करने की जो झूठी जिद है उसे छोड़ दीजिए। जब आप इस व्यर्थ के कर्ता भाव को छोड़ देते हैं तो जीवन में एक गहरी शांति और सहजता का जन्म होता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर अपनी चिंताओं की गठरी को खोल कर देखिए। हम दिन रात जिन बातों को लेकर तनाव में रहते हैं, बीपी बढ़ाते हैं और अपनी नींद खराब करते हैं, सोचिए कि उनमें से कितनी बातें सचमुच हमारे हाथ में हैं। हम पानी मथकर घी निकालने की जिद में अपनी आज की ताजगी को बर्बाद कर रहे हैं। आज कोशिश कीजिए इस व्यर्थ के मानसिक बोझ को विसर्जित करने की। अपना श्रेष्ठ कर्म कीजिए, लेकिन परिणाम की चिंता उस विधाता के हाथों में सौंप दीजिए। उस राम नाम की व्यवस्था पर भरोसा रखिए जो हर पत्ते को उसकी सह जगह पर थामे हुए हैं। जब आप अपनी योजनाओं की जिद छोड़कर परमात्मा की रजा में राजी होना सीख जाएंगे तो आपका जीवन चिंताओं के भंवर से निकलकर परम विश्राम और आनंद के सरोवर में ठहर जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए राम।

नमस्कार, ओम शांति। पसायदान, संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर जी माउली, उनका पसायदान, उनमें नौ चरण है, नौ श्लोक है, नौ ओवी है, और नौ ओवी का चिंतन हम कर रहे हैं। जब हम ये शेयर करते हैं तब बहुत सारे लोगों का फीडबैक आता है मुझे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का, मेरे दोस्तों का, कि बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में ये प्रश्न है कि नौ ओवी है, नौ चरण है, और उसके ऊपर अगर हमें पार्ट बनाने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नौ और इंट्रोडक्शन दो तीन, ऐसे 12-13 पार्ट हो जाएंगे तो सफिशियंट है। आपको क्या लगता है? ये जो उद्देश्य था पसायदान आपके साथ शेयर करने का, उसका उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है कि शब्दार्थ आपके साथ शेयर करें, शब्दार्थ तो है ही, लेकिन ये माउली का शब्द जो है, हर एक शब्द, एक एक शब्द जो है, उसका प्रयोग उन्होंने जो किया है, मुझे लगता है उसमें गहनता है। और अगर हम गहनता जान लेने की कोशिश करेंगे, जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे, मैं ये दावा बिल्कुल नहीं करूंगा कि मैं जड़ तक जा पा रहा हूं, लेकिन आप जा पाएंगे। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि इसमें से क्या ज्ञान आपको मिलता है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आपके विचारों को कुछ दिशा देनी है। आप मेरे से भी काफी ज्ञानी हैं, ऐसे बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, लेकिन उसके ऊपर चिंतन करने के लिए कुछ अगर अच्छी दिशा मिले तो और भी कुछ रत्न निकल सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसलिए आज हमारा 10वां एपिसोड है, 10वां पार्ट है, और हमारे चरण ओवी जो है, तीसरी भी अभी पूरी नहीं हुई। दुरितान से तिमिर जावो, विश्वस्व धर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात। हमने दुरित, तिमिर और विश्व, उसके ऊपर चिंतन किया, फिर विश्व के बाद स्वधर्म, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, स्वधर्म के ऊपर भी हमने चिंतन किया। विश्व के ऊपर आज जैसे मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैठा था, तब ऐसे मेरे मन में एक ख्याल आया कि मराठी में बहुत बार हम कुछ शब्द प्रयोग करते हैं, उसका अर्थ समझने की कोशिश भी नहीं करते। हम मराठी में अगर किसी के पास दरिद्रता है तो हम ये शब्द प्रयोग करते हैं, 18 विश्वे दारिद्र्य, 18 विश्वे दारिद्र्य। आज मेरे मन में प्रश्न आया कि ये 18 विश्वे दारिद्र्य, 18 विश्व कहां से आए, उसके पीछे का अर्थ क्या है। कोई भी भाषा है, उसके जो शब्द प्रयोग, वाक प्रचार बोलते हैं, सेइंग, उसके पीछे कुछ ना कुछ सत्य छिपा हुआ रहता है, और ये सत्य हमें उजागर करना है। और ये पसायदान के आपके साथ शेयर करने का उद्देश्य ये है। हम ये 18 विश्व के ऊपर अभी ये विषय नहीं है हमारा चिंतन का, ऐसे ही मेरे मन में प्रश्न आया तो आपके साथ शेयर किया। तो ऐसे हर एक शब्द का प्रयोग जो माउली ने किया है, माउली तो योगी राज है, ऊपर से बहुत शब्द जो है आसान दिखेंगे, उसका अर्थ तो जैसे मैंने कहा 5 मिनट में, एक ही पार्ट में पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे माँ का प्यार होता है, उसको डिफाइन नहीं कर सकते, वैसे ये माउली का जो पसायदान है, नौ ओवी, नौ चरण, हर एक शब्द मुझे इतना आकर्षित करता है, इतना अच्छा लगता है कि उसके ऊपर कितनी भी बात करे, कितना भी चिंतन करे, वो भी कम है। तो यह ऐसा विश्व के ऊपर हमने कुछ चिंतन किया, अभी हम चिंतन कर रहे हैं सूर्य के ऊपर, विश्व स्वधर्मे, विश्व हो गया, स्वधर्म हो गया, सूर्य पाहो। अभी ये विश्व जो है वो सूर्य को क्या देखेगा,
स्वधर्म तो ठीक है, जैसे कई लोग कहते हैं कि स्वधर्म मीन्स अपना धर्म, लेकिन ये स्वधर्म क्या है इसके ऊपर भी चिंतन किया तो ये विश्व सूर्य को क्या देखेगा? सूरज को तो हम रोज देखते हैं, सुबह देखते हैं, शाम को सूरज डूब जाता है, सूरज उगता है और सूरज डूबता है, लेकिन वो ना कभी उगता है ना कभी डूबता है। हम सूरज के तरफ मुंह मोड़ लेते हैं तो शाम हो जाती है, और मुंह करते हैं तो दिन आ जाता है। तो ये सब चीजें जो है, ये सूरज सूरज जो कहते हैं, तो मावली को अभिप्रेत क्या है? ये सूरज है सन। और मजे की बात देखिए, सन जो है, सन इज वन। आप अमेरिका में जाओ तो सन है, इंग्लैंड में जाओ तो सन है, ऑस्ट्रेलिया में जाओ सन है, भारत में रहो सन है, सूरज है। उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन है एक ही। कार्य क्या करता है? ऊर्जा देता है, 24/7 ऊर्जा देता है, भले आपको मिले या ना मिले वो तो बात अलग है, लेकिन वो तो देते रहता है। और ऐसा सूरज जो है उसे हमने भगवान का रूप दिया है। मुझे याद है जब बचपन में मैं सूर्य नमस्कार, महाराष्ट्र में है, बहुत जगह है, भारत में है, सूर्य नमस्कार एक अष्टांग योग है, और बचपन में मेरे पिताजी मुझे इंस्पायर करते थे, पिताजी ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी थी, और मैं 108 नमस्कार डालता था, सूर्य नमस्कार। ये सूर्य नमस्कार होने के बाद वो तीर्थ लेते थे, और ये तीर्थ में एक बहुत अच्छा श्लोक है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम सूर्य पादोदकम तीर्थम जठरेत धारयाम्यहम्। सूर्य पादोदकम, सूरज के पावत जो है, सूरज का चरणों का तीर्थ जो है, वो अगर मैं मेरे जठर में मेरे पेट में धारण करता हूं तो मेरा अकाल मृत्यु हरणम, मेरा अकाल मृत्यु निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। जितनी व्याधि है सर्व व्याधि उनका विनाश हो जाएगा। कब? जब मैं सूरज के पादुका चरणों का तीर्थ मेरे जठर में धारण करता हूं। अब ये सूरज का पाव कहाँ है, सूरज के चरण कहाँ है, उनका तीर्थ क्या है, और उसके पीछे की भावना क्या है, इसके ऊपर भी अलग से चिंतन होना। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, ये सूरज जो है क्या यही सूरज है ज्ञानेश्वर को अभिप्रेत? अगर यही सूरज है तो विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो ये मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा विश्व जो है सूरज को देखता ही है। ज्ञानेश्वर जी के पहले भी देखता था, बाद में भी देखता है, अभी 700 साल पूरे हो गए, आज भी हम सूरज को देखते हैं, सारा विश्व देखता है। फिर विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, ऐसे परमात्मा के पास रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? इसके ऊपर हम जरूर चिंतन करेंगे, सूरज क्या है इसके ऊपर चर्चा करेंगे, विवेचन करेंगे और विचार सागर मंथन करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, ओम शांति।

नमस्कार, ओम शांति। विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, इसके ऊपर हमारी चर्चा शुरू थी। हमने विश्व के बारे में चिंतन किया, स्वधर्म के बारे में चिंतन किया और पिछले एपिसोड में सूर्य के बारे में भी चिंतन किया। हमने ये देखा कि मावली को सूर्य अभिप्रेत था यह ग्रह। सूर्य जो शब्द का प्रयोग किया है वह सिर्फ लिमिटेड है सूर्य ग्रह के हिसाब से या और कुछ अलग है, इसके ऊपर भी हमने चिंतन किया। अभी हम उसको तीनों को जोड़ेंगे, सूर्य को देखा, स्वधर्म को देखा, विश्व को देखा। अभी विश्व स्वधर्मे सूर्य तीनों को अगर जोड़ के देखेंगे तो हमें और उस गहनता तक जाने के लिए मदद मिलेगी। देखिए, सूर्य जो है ग्रह माले का जो सोलर सिस्टम है उसमें से ग्रह सूर्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज इट गिव्स एनर्जी टू एवरीबडी। कंटिन्यूअस एनर्जी उससे मिलती है, उसके सोलर एनर्जी बोलते हैं, और इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं रहता। भले हम सन कहेंगे, सूरज कहेंगे, सूर्य कहेंगे और कोई भाषा में और कुछ कहेंगे, लेकिन उससे कोई ये मेरा सूरज है, ये आपका सूरज है, ये मेरा सन है, ऐसा कभी डिस्प्यूट सुना है हमने? नहीं है। सूरज जो है उससे एनर्जी हर कोई लेता है एंड एवरीबडी इज हैप्पी। भले किसी से ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं, भारतीय संस्कृति में सूरज को भगवान का रूप दिया गया है और सूरज को इसलिए भगवान मानते हैं। अभी ये सूरज जो है उसे भगवान मानते हैं, लेकिन सचमुच ही भगवान है या भगवान कोई और कोई है? सूरज की उपमा दी है क्योंकि जैसे सूरज सर्व ग्रहों में श्रेष्ठ है वैसे भगवान भी सबसे ऊंचा है, इसलिए ऊपर वाला सर्वशक्तिमान कहते हैं उनसे। और मुझे लगता है मावली ने जो सूर्य का शब्द प्रयोग किया है उसके पीछे यही राज है। उनको सूरज जो अभिप्रेत है, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, ये सूर्य जो है वो भगवान के बारे में, वो भगवान को देखते हैं और वो अभिप्रेत है उनको। अभी अगर सूरज इक्वल टू भगवान और भगवान इक्वल टू सूरज और भगवान का नाम ही सूरज, ऐसे अगर विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो में है तो अभी पूरा का पूरा अर्थ देख लीजिए। विश्व, सारे विश्व में भगवान के अलग अलग रूप है, भगवान की अलग अलग मान्यताएं हैं, नाम अलग अलग है, पहचान अलग अलग है, और शायद सही पहचान न होने के कारण या अलग अलग पहचान होने के कारण या उसके जो कर्म है वो अलग अलग होने के कारण या उसका जो कार्य है उसका पूरा पूरा ज्ञान न होने के कारण शायद हमारे में लड़ाई है, झगड़ा है। ये हमारा भगवान है, ये आपका भगवान है, और ऐसे नहीं कि सिर्फ चार धर्म जो है मेन मुख्य धर्म जो मानते हैं हम चार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें भगवान अलग है, ऐसे नहीं है। अभी हिंदुओं में भी इतने देवताएं हैं, फिर भगवान क्या है, देवता क्या है, ये भी कंफ्यूजन है। और इसलिए सूर्य जो है, सूर्य के बारे में कभी कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान के बारे में है। अगर भगवान इक्वल टू सूरज और सूरज इक्वल टू भगवान ये हम सोचते हैं तो विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो। शायद मुझे ऐसे लगता है मावली को ये अभिप्रेत है कि अगर जिस दिन सारा विश्व
अपने स्वधर्म में स्थित, स्वधर्म मीन्स आत्मा का धर्म, शांति का धर्म। आत्मा का धर्म है शांति, पिछले एपिसोड में हमने देखा था। तो आत्मिक स्थिति में सारा विश्व अगर स्थित हो जाता है और सूर्य जो है, भगवान जो है, उनको देखता है, तो भगवान का सही ज्ञान सबको हो जाता है। विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो। और ये रिक्वेस्ट या ये विजन एक दिन ऐसे आएगा, माउली को भी लगता है कि सारा विश्व जो है, हम सिर्फ कहते हैं गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, सत्य, सत्यमेव जयते, भगवान की विजय होगी, अंतिम विजय भगवान की होगी। अगर भगवान सत्य है, गॉड इज ट्रुथ, ये सही है, तो विजय किसकी होगी? अंतिम भगवान की होगी। और यही विजय जो है, और इसलिए देखिए सत्य युग कहा जाता है, भगवान को सत्य कहते हैं और युग को भी सत्य कहते हैं। और पांडव देखिए, पांडव में भले ही उनका जो श्रेष्ठ था, पांडव में बड़ा दादा, उसका नाम था युधिष्ठिर, लेकिन उनको भी कहते हैं धर्मराज। तो ये धर्म हो या सत्य हो या भगवान हो, उनकी विजय होगी, मीन्स जो अच्छाई की बुराई पर विजय होगी। और ये स्वधर्मे, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, सारा विश्व जो एक मुख से अगर भगवान को पहचान लेगा, ज्ञान भगवान के बारे में मिलेगा, तो क्या होगा? बुराई रहेगी नहीं, कोई लड़ाई नहीं रहेगी, कोई दुराचार नहीं रहेगा, कोई अशांति नहीं रहेगी, और सब अपने शांत स्वभाव में, शांति के धर्म में स्थित हो जाएंगे। तो सबके विचार क्या होंगे? विचार भी एक होंगे। और इसलिए बोलते हैं एक विचार तो एक आचार हो जाएगा, एक उच्चार हो जाएगा, और सब जहां एक होते हैं, यूनिटी। जब यूनिटी हो जाती है, तब हर चीज आसान हो जाती है, और विश्व परिवर्तन जो है वो भी आसान हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा था, माउली का जो पसायदान है, उसमें जो रोड मैप है या रिक्वेस्ट है, तो ये रोड मैप यहां पूरा हो जाता है। सब्जेक्ट टू कंडीशंस क्या क्या है? आता विश्वात्मके देवे, उन्होंने विश्वात्मक देव को बताया, मांगा, येने वाग यज्ञ तोषावे, मेरे वाग यज्ञ जो है उससे आप संतुष्ट हो जाओ, और मुझे पसायदान दो, मुझे दान दो, मुझे क्या दो? ब्लेसिंग्स दो, मुझे आशीर्वाद दो। आता विश्वात्मके देवे, येने वाग यज्ञ तोषावे, तोषो निमज द्यावे पसायदाने, जे खळांची व्यंकटी सांडू, तया सत्कर्मी रती वाढू, भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे। ये भी देखा हमने। फिर दुरितांचे तिमिर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। ये जब हो जाएगा, तब स्वर्ग आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा। और ये सतयुग कैसा है, उसका वर्णन अगले कड़ी में। तो ये जो ओवी है, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, उसके ऊपर जब चिंतन करेंगे, तब लगता है, मुझे लगता है।

पूर्ण नहीं होती, क्योंकि शायद ऐसे कहते हैं कि आपकी इच्छा आपको अच्छा नहीं बना देती। और जब मुझे पूरा ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तो कोई इच्छा ही नहीं रहती और सब अच्छा हो जाता है। इसलिए जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात, क्योंकि इच्छा ही अच्छी होगी। आजकल हमारी इच्छाएं अच्छी होगी उसकी गारंटी नहीं है, इसलिए कभी होती है पूर्ण या कभी नहीं होती है। लेकिन वो स्टेज जो माउली को अभिप्रेत है, जब विश्व स्वधर्म में, सारा विश्व अपने स्वधर्म में स्थित होके सूरज को देखने लगेगा, पहचानने लगेगा, तब जो मन में इच्छा है, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात, ये पूर्ण हो जाएगा। और फिर कैसे होगा ये स्वर्ग का रोड मैप, कैसे होगा स्वर्ग का दर्शन, कैसे होगा, वो अगले कड़ी में हम देखेंगे। तो यहां अपनी चर्चा हम पूरी करेंगे, विश्व स्वधर्म में सूर्य पाहो, और अगले कड़ी में अगले चरण के ऊपर चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम शांति।

0: नमस्कार और स्वागत करते हैं आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी में। बहुत से फोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं, बहुत से ईमेल्स आ रहे हैं और ये बात हमें समझ में आ रही है कि जिन मूल्यों की हम बातें कर रहे हैं, जिंदगी के जिन मुद्दों को हम जान रहे हैं, जिनके आंसर्स तलाश रहे हैं, उसमें कई कई मुश्किलें आपके सामने आ रही हैं जब उन्हें हम प्रैक्टिकली हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी फिर से हैं, उनका स्वागत करते हैं।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति शिवानी। और सबसे पहली बात आज, क्योंकि शुरुआत ही मैंने सीधे इससे की है कि हमने खुशी की बात की थी, हमने टेंशन की बात की थी, एंगर की बात की थी और जिस तरह का हमारे पास रिस्पॉन्स आया है हमारे दर्शकों का, उससे तो मतलब लग रहा है कि लोग जो है वो बहुत मोटिवेटेड हो गए हैं, जैसे मैं भी बहुत मोटिवेटेड रही हूँ कि इसे इम्प्लीमेंट करने का, बात करने में। क्योंकि सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि बात समझ में आ जाए, समझ आ रही है लेकिन वो कंटिन्यूअस इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, खासकर एंगर के ऊपर जो हमने बात की थी, जो रॉन्ग मिथ्स हैं, यू नो रॉन्ग नोशंस को लेकर हम चल रहे थे। पीपल हैव अंडरस्टूड दैट, यू नो, बिकॉज़ आई आल्सो अंडरस्टूड कि दे आर रॉन्ग, क्योंकि हम कहीं खुश नहीं हो रहे थे गुस्सा कर।
1: आपने देखा लेकिन कल अपने आप को
0: कि गुस्सा ना करूं मैं। हाँ, बिल्कुल, मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की लेकिन मुझे जो मुश्किल ये आई कि मेरे साथ गुस्से का ये था कि अगर मुझे काम निकलवाना है तो मुझे थोड़ा गुस्सा करना चाहिए, ये मैं मानती थी और मैंने कोशिश की कि मैं गुस्सा ना करूं और प्यार से कोशिश करूं, लेकिन वही पेशेंस चाहिए उसके लिए। और अल्टीमेटली आई रियलाइज कि मैं फिर बहुत ही यू नो लाइक सॉफ्ट हो गई, तो वो काम ही नहीं हुआ फिर। तो उसमें मुझे ये एक मुद्दा जो है कि गुस्सा ना करके लेकिन अथॉरिटी तो रखनी चाहिए ना।
1: True.
0: वो कहीं वो बैलेंस
1: ये लेकिन जो ज्यादातर हमने देखा ना, जैसे आपके पास जो क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हम फिनिश करना चाहते हैं लेकिन वो
0: नहीं
1: फिनिश नहीं हो पा रहा। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आपको क्या लगता है गुस्सा खत्म करने में कितनी देर लगेगी? जैसे कई लोग पूछते हैं कितना टाइम लगेगा, आज अगर डिसाइड करें कि हमें अपने, क्योंकि परेशान तो सभी हैं उससे।
0: एक्चुअली मुझे लगता है कि एक क्षण भी नहीं लगना चाहिए बेसिकली।
1: एक क्षण में खत्म हो जाएगा
0: नहीं, क्योंकि आपका माइंडसेट की बात होती है ना।

0: हमारा माइंडसेट पूरी तरह से ये रियलाइज कर लेगा तो चाहे जितनी भी हैबिट पड़ी हुई हो. भाई लोग सिगरेट छोड़ते हैं तो एक मिनट में छोड़ते हैं.
1: वो भी तो करते हैं. वो 1 मिनट कौन सा चाहिए, वो रियलाइजेशन कौन सी चाहिए, जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये मेरे काम की चीज नहीं है. अभी हम क्या कहते हैं, गुस्सा अच्छा नहीं है, गुस्सा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो गुस्सा करना पड़ता है. ये जो थोड़ा थोड़ा गुस्सा करना पड़ता है, जब तक ये मेरे पास बिलीफ होगा तो वो चीज मैंने अपने पास संभाल के रखी हुई है. जैसे घर में सामान संभाल के रखते हैं, पता नहीं कब काम आ जाए, यू नो, एंड इन द प्रोसेस वी फिल अप आवर हाउस विद
0: सो मेनी थिंग्स व्हिच आर और कभी काम नहीं आती,
1: बिकॉज़ वी हैव केप्ट दैट थॉट कि पता नहीं कब काम में आ जाए. और एक्चुअली उसको बाहर फेंकने में कितना टाइम लगता, जिस दिन सोचा कि ये अब मेरे काम बिल्कुल नहीं आने वाला, हम उसे उठाते हैं और बाहर फेंक देते हैं. गुस्सा पता नहीं कब मेरे काम आ जाए. कई ऐसी बातें होंगी जब मुझे थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो करना ही पड़ेगा. यू नो दीज जो थॉट्स हैं कि बिल्कुल खत्म कैसे हो सकता है, यू नो इट्स डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूं. हाउ इज दैट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड? इट्स नॉट पॉसिबल. यू नो ये जो पूरी सीरीज ऑफ थॉट्स चलती है कि आज की दुनिया में सबके साथ काम करते हुए पॉसिबल नहीं है,
0: काम नहीं निकलवा पाऊंगी मैं, कहीं गुस्सा तो करना ही पड़ेगा.
1: और बाकी लोग नहीं तो मेरा अनड्यू एडवांटेज ले रहेंगे, मुझे एक्सप्लॉइट करने लगेंगे, तो थोड़ा तो गुस्सा चाहिए. अब जब तक वो थोड़ा तो गुस्सा चाहिए तो फिर वो अंदर संभाल के रखा हुआ है. फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मुझे नहीं चाहिए लेकिन मुझे थोड़ा तो चाहिए? अगेन वी आर ऑलवेज इन दीज कॉन्ट्रडिक्शंस. मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं करना लेकिन मुझे थोड़ा तो चाहिए. खुद ही चूज किया, खुद ही उसे संभाल के रखा, तो वो आपके पास ही रहेगा. जिस क्षण आप कहेंगे कि अब मुझे ये
0: पूरी
1: बिल्कुल नहीं चाहिए, ये मेरे काम की चीज नहीं है, मैं हर काम और हर व्यक्ति से इसके बिना डील कर सकता हूँ, इट्स गॉन.
0: Great.
1: That it's really gone.
0: But I think for that, we have to be internally very strong.
1: So. No, we just have to get convinced actually. We don't even need to be strong. Because I just need to get convinced. I don't need it. We are not convinced. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि we are not convinced कि we can work without that. और वो अपने आप को कन्विंस करना, I will have to take myself through, you know, a few days of experiment. कि हर स्टेप पर देखें. पहली बिलीफ कि गुस्सा तो चाहिए, चेक करें, या गुस्सा तो नॉर्मल है, चेक करें करके. अभी क्या हो रहा है, कर रहे हैं और आगे काम करते जा रहे हैं, वी नॉट स्टॉपिंग एंड चेकिंग. गुस्सा करने के बाद कैसा फील हुआ, अच्छा लग रहा है, बॉडी इज फीलिंग ओके. आज डॉक्टर भी हमें बता रहा है कि एक क्षण का गुस्सा भी आपके ब्रेन से लेकर पूरे नर्वस सिस्टम और हर अपने शरीर के ऑर्गन पर इतना नुकसान कर रहा है. हाउ कैन इट बी गुड? जो चीज इतना डैमेज फिजिकली कर रही है वो इंटरनली कितना डैमेज कर रही होगी. हाउ कैन इट बी गुड? आई एम स्प्रेडिंग सो मच नेगेटिविटी इन द एनवायरमेंट, मेरे रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं. हाउ कैन आई कॉल दैट थिंग गुड? उससे गुड कौन सी चीज निकल रही है? आई विल हैव टू आस्क मायसेल्फ. जब मैंने गुस्सा किया उसके बाद स्टॉप चेक, इसमें से गुड कौन सा निकला? जो मैं सारा दिन अपने आप से कह रही हूँ गुस्सा करना अच्छा है, थोड़ा तो गुस्सा करना पड़ेगा. Point out and write it down. What was the good that came out now? If it really came out, use it next time. If it didn't, tell yourself, no good. Jitni baar apne aap ko har paristhiti mein check karenge and apne aap se baat karke kahenge, no good. Again, this time, no good. Over a period of time, I will convince myself. Dekho, dusron ko hum kaise convince karte hain? Apne aap ko bhi to convince karna padega. Kyunki we cannot change other people.
0: We have to change ourselves.
1: Unfortunately, पूरी जीवन औरों को बदलने की कोशिश में निकल जाती है और इतना टाइम और एनर्जी इसमें इन्वेस्ट हो जाता है कि अपने लिए टाइम और एनर्जी नहीं है. दूसरों को सलाह देना बहुत ईजी है, आप ये मत कीजिए, आप उन्होंने ये कह दिया, कोई बात नहीं, आप भूल जाइए, आप भूल जाइए. हमें कुछ कोई कह देता है, अपने आप को कहना कितना ईजी मुश्किल लगता है, भूल जाइए, कोई बात नहीं. काउंसिल योर सेल्फ, दैट्स मेडिटेशन. सेल्फ काउंसलिंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन. टॉकिंग टू, आप देखिए काउंसलर कभी भी नेगेटिव टॉक नहीं करेगा, आप बुरे हो, काउंसलर कभी नहीं कहेगा, कहेगा आप ठीक हो बिल्कुल, आप बस इसको ऐसा थोड़ा सा करो. यू कैन टेल योर सेल्फ दैट. हमें किसी काउंसलर के पास या किसी साइकेट्रिस्ट के पास काउंसलिंग के लिए या इवन किसी पड़ोसी के पास या किसी फ्रेंड के पास काउंसलिंग के लिए जाने की क्या जरूरत पड़ रही है? क्योंकि वी कैन नॉट काउंसिल आवर सेल्फ. एंड फाइनली एक्चुअली बहुत ज्यादा हमारी कोई और काउंसलिंग नहीं कर सकता. अगर आप मुझे बैठकर अभी बहुत अच्छी राय दे भी, मुझे सुनने में अच्छी भी लगे, बट आई विल स्टिल गो बैक विद माई ओल्ड बिलीफ कि आप तो ठीक कह रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है जी मेरे बच्चे कैसे हैं, जी आपको नहीं पता, आपके हस्बैंड वैसे नहीं है ना, आपको नहीं पता मेरे हस्बैंड कैसे हैं, तो मेरे हस्बैंड कैसे हैं वो अगर मुझे ही सिर्फ पता है तो फिर मेरी काउंसलिंग
0: मैं अपने आप
1: मुझे ही करनी पड़ेगी।
0: अच्छा, लेकिन जब हम, बहुत अच्छी आपने ये बात कही कि जब हम काउंसलर के पास जाते हैं तो कभी भी वो नेगेटिव नहीं बताते,
1: नेगेटिव नहीं,
0: लेकिन जब हम अपने आप से बात करते हैं तो पहली चीजें अपनी नेगेटिव
1: नेगेटिव, और इसीलिए तो हम अपने आप से
0: डिप्रेशन में चले जाते, डर
1: लगते हैं, बिकॉज जैसे ही हम बैठते हैं अपने आप से हम बहुत सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं,
0: सब कुछ नेगेटिव दिखने लगता है,
1: राइट, एंड देन इट्स लाइक ये अच्छा नहीं है, एंड आई मूव आउट जो वो हमने उस दिन बात की कि रोशनी में फिर उस चीज को तलाश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंदर जैसे ही ट्राई किया तो बड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा
0: था, लग गया।
1: तो एट एवरी स्टेप अपने बिलीफ को चेक कीजिए, एंगर इज गुड, नो, जब आप 8-10 परिस्थितियों से गुजरेंगे और हर टाइम, क्योंकि गुड कभी हो नहीं सकता वो, तो हर टाइम जब आपका फाइनल एनालिसिस निकलेगा, नो इट वॉज नॉट गुड, वॉट गुड केम आउट ऑफ इट, नथिंग, धीरे धीरे यू विल टेल योरसेल्फ यस दिस बिलीफ वॉज रॉन्ग, पहले तो इसको साइड करो कि एंगर इज नॉट गुड, सेकेंड दूसरे ने किया तो मुझे भी करना ही होगा, चेक योरसेल्फ, जस्ट टुडे मतलब एवरीडे मॉर्निंग डिसाइड इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस यू विल हैव टू प्रोग्राम, दिस इज प्रोग्रामिंग, आपको सुबह उठकर अपने आप से एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, अगर करना चाहते हैं आज, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी सामने आ जाए, चाहे कोई कुछ भी बोल दे, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा।
0: लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम ये आती है, पीयर प्रेशर, सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दे, मैं चुप रह जाऊं तो लोग क्या सोचेंगे,
1: आप ये सोच रहे हैं कि लोग ये सोचते हैं कि गुस्सा एक ताकत है, ये आप सोच रहे हैं, एक्चुअली लोग ये नहीं सोचते, जस्ट विजुअलाइज अ सीन, आप अपने आप को सिचुएशन में डालने की जगह सिचुएशन से डिटैच हो जाइए, उसमें खड़े होने की बजाय उन लोगों के साथ जाके खड़े हो जाइए, नो बी अ पार्ट ऑफ द ऑडियंस, आपके सामने कोई आया बहुत जोर जोर से गुस्सा कर रहा है, या यू आर द ऑडियंस, मेरे सामने कोई अभी आया बहुत जोर जोर से गुस्सा कर रहा है, यू आर वॉचिंग द सीन, ठीक है, एज एन ऑब्जर्वर, दिस इज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर, एंड यू वॉच मी नाउ कि मैं शायद नहीं गुस्सा करूं ऊपर से, एंड आई रिमेन वेरी काम दैट टाइम, एंड आई कैन जस्ट स्माइल बैक, एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन दैट पर्सन गेट्स ओके, देन आई विल गो एंड टॉक टू हिम एंड से व्हाट आई वॉन्ट, यू आर एन ऑब्जर्वर, आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि एम आई वीक, योर कंक्लूजन वॉज आई एम स्ट्रॉन्ग, बट आई कीप थिंकिंग, सी दिस इज रॉन्ग बिलीफ, मैं ये सोचूंगी कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं कमजोर हूं, और आपको प्रूव करने के लिए मैं चिल्लाना शुरू कर दूं, एंड फाइनली डाउन द लाइन मुझे क्या फर्क पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हैं, इवन अगर आप सोचें कि आप मैं कमजोर हूं, दैट्स फाइन, वो आपकी सोच है, अगर मुझे ऐसा रहकर अच्छा लग रहा है, इफ आई फील मोर एनर्जाइज्ड, क्योंकि गुस्सा करने के बाद आई एम डिस्चार्ज्ड, आई एम एब्सोल्युटली डी एनर्जाइज्ड, एंड मेरा वो संबंध बिगड़ रहा है, अब आपका वो संबंध नहीं है, वो मेरा संबंध है, उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आप क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं
0: पड़ता। लेकिन होता ये देखा गया है कि आप किसी ने आपसे गुस्सा किया या आपके इंसल्ट की और आप वापस नहीं रिएक्ट कर पाए, आप अंदर कुलबुलाते रहते हैं, वो जो एक कुलबुलाहट है वो, तो मेरी एनर्जी डिस्चार्ज अगर हो जाती तो बेहतर था, कई बार
1: ये भी एक बिलीफ है, और समवेयर डाउन द लाइन मेडिकली उसको राइट भी प्रूफ कर देते हैं कि अंदर अंदर नहीं घुटना चाहिए, बाहर निकाल दो, लेकिन उस प्रोसेस में, क्योंकि कुछ समय हमने वो धारणा को लेकर देखा कि अंदर नहीं रखो बाहर निकाल दो, लेकिन फिर हम निकालते ही रहे हर टाइम, यू सी, देन वी नेवर रियली गॉट ओवर इट, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी चीज को फोर्सफुली भी छोड़ना पड़ता है, आपको उसको दो बार चार बार शायद वो आपको अंदर तकलीफ देगी, पांचवी बार वो अंदर भी तकलीफ देना बंद कर देगी, लेकिन अगर हम अपने आप को हर टाइम ये कह देंगे नहीं वो अंदर तकलीफ देती है इससे अच्छा बाहर निकाल दो, when will it get over? It will go stepwise ना, first I stopped doing it. पहले हम फिजिकली किसी पर हाथ भी उठा देते थे, फर्स्ट अटेंशन हाथ नहीं उठना चाहिए, सेकेंड अटेंशन मुख से गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए, थर्ड अटेंशन गलत नहीं सोचना चाहिए, सो मे बी इफ आई कांट डू इट दिस वे देन आई विल हैव टू डू इट दिस वे, बट आई विल हैव टू डू इट, आई कांट गिव माई सेल्फ द एक्सक्यूज कि नहीं निकालना बहुत अच्छा है इसलिए करते रहो, दैट गेव अस मोर फ्रीडम कि गुस्सा कर दो, करने से आप हल्के हो जाओगे,
0: हाँ,
1: किसको आज तक हल्का फील हुआ है गुस्सा होने के बाद,
0: वो
1: तो इल्यूजन, आप गुस्सा कर दो आप हल्के, हल्का इज लाइटनेस, हल्का इज हैप्पीनेस. गुस्सा करने के बाद हल्का कब फील होता है? गुस्सा करने के बाद तो बहुत भारी लगता है.
0: बहुत बुरा लगता है एक्चुअली. हेवी और लाइट की बात
1: वही बुरा मतलब दैट इज हेवीनेस ना. अपने आप से अंदर गिल्टी या अपने आप से क्या जरूरत थी, इसके बिना भी तो चल सकता था.
0: और कई बार हम कहते इतना गुस्सा कर देते तो था.
1: हाँ, वो भी
0: ज्यादा चले गए.
1: वो भी
0: ज्यादा कह दिया मैंने कुछ, इतना नहीं कहना चाहिए था.
1: क्योंकि जब रिएक्ट करते हैं तब कोई कंट्रोल नहीं होता है, तब ज्यादा और कम उस टाइम याद रहने वाला नहीं है. तो वो अपने आप से एटलीस्ट इनिशियली जब हमने ट्राई किया तो इट वॉज लाइक अब मुझे गुस्सा नहीं करना है, अब ये कुछ भी बोले. तो हो सकता है शुरू शुरू में क्या हुआ कि ऊपर से नहीं कहा, अंदर बुरा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था. अभी भी कई बार ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो स्टेज तक तो पहुंच जाए कि बाहर से तो बोलना बंद करें, धीरे धीरे अंदर से भी बंद हो जाता है.
0: शिवानी, यहाँ एक जो हमने पहले भी बात थोड़ी आधी छूटी थी, ये कि जब अथॉरिटी की बात है कि अभी तक मैंने ये कहा कि मेरे लिए था कि भैया गुस्सा करूंगी तो काम होगा, नहीं तो काम नहीं करते हैं. लेकिन जब मैंने ये कोशिश की कि भैया गुस्सा नहीं करते हैं, प्यार से काम कराने की कोशिश करते हैं, तो प्यार से काम हुआ ही नहीं.
1: राइट.
0: तो मैंने बोला चलो काम ही नहीं होता. लेकिन ये भी तो नहीं होना चाहिए,
1: वो तो पॉसिबल नहीं है. क्योंकि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीम लीडर या व्हाटएवर प्रोजेक्ट हेड, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी करनी है, या एज अ पेरेंट बच्चों के साथ, ये उस तरफ भी एप्लीकेबल है. लेकिन गुस्सा एंड डिसिप्लिन, यू नो, कई लोग डिसिप्लिन के नाम पे बहुत गुस्सा कर देते हैं कि अगर मैंने, मुझे बच्चों को तो बच्चे बिगड़ जाएंगे. वैसे ही उनकी हालत देख लो आज, इतना आपने डिसिप्लिन उस तरह से करने की कोशिश की, उनकी हालत आज देखिए क्या है, वो खुद ही इतना हॉलो हो गए हैं अंदर बिल्कुल. तो गुस्सा और डिसिप्लिन, लाइक वी डिस्कस्ड रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स, गुस्सा इज रिएक्शन, डिसिप्लिन इज रिस्पॉन्स. किसी से कोई गलती हो गई है, हम उस टाइम कैसे रिस्पॉन्ड करें. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, सामने से कोई चलते हुए आ रहा है, चलते चलते बीच में एक पत्थर था, उसका पैर उससे ठोकर लगा, वो गिर गया, चोट लगी, बहुत जोर से चोट लगी. आप एक पेरेंट हैं या आप एक टीम लीडर हैं, अब आपका क्या रिस्पॉन्स होगा?
0: डेफिनेटली विल गो, आई विल गो एंड फाइंड आउट कि ज्यादा चोट नहीं लगी हो, या यू नो, उसको यही समझाऊंगा कि देख के चलिए. और चोट
1: पहले किस चीज को अटेंड करेंगे?
0: उसकी चोट,
1: चोट को आप उसे उठाएंगे, उसे हील करेंगे. पहले आप उसे वहां खड़े होकर लेक्चर नहीं देंगे कि चलने का सही तरीका कैसा होता है, क्योंकि अगर आप देंगे भी तो वो सुनने की हालत में नहीं. ही इज इन पेन, फर्स्ट ट्रीट द वुंड. लेकिन हम अगर लेक्चर दें, और लेक्चर देना भी अगर हम उसको और ही जोर से उसको पीटने लगे लाठी से, तुम ऐसे चले कैसे, तुम गलत चले कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गिरने की, what kind of disciplining is this? तो similarly एक company में या एक parent के साथ किसी ने कोई गलती कर दी है, वो व्यक्ति ने गलती करने के बाद he himself knows he's made a mistake, or the child himself knows I have not done well in my exams, but that time that person is already in pain, उसको अंदर already पता है कि मेरे से गलती हुई है, अब मुझे डांट पड़ने वाली है. now you know that fear element is there, he is in pain. You as a leader, you as a parent, what's your role right now? You have to remember that. हम वो ही कर रहे हैं कि दूसरा गिरा हुआ है, वो दर्द में है, हम वहां उसको खड़े होकर और पीटते हैं. तुमने ऐसा किया क्यों, तुमने ये किया क्यों. जब वो ठीक हो जाता है तब हम उसे कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जब वो दर्द में है हम उसे और पीटते हैं, उसे लेक्चर देते
0: हैं. जब वो उसे कुछ
1: समझ नहीं आ रहा, उस समय सुनने की समझने की स्थिति में नहीं है. और इसीलिए ज्यादातर लोग कहते हैं हम इनको इतना समझाते हैं लेकिन इन्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारा समझाने का समय गलत था. हम तब समझा रहे थे जब वो समझने वाली स्थिति में नहीं थे,
0: जब ऑलरेडी प्रॉब्लम.
1: जस्ट लुक एट द सिचुएशन ना, कि मेरे से कोई गलती होगी एंड माई बॉस जस्ट सेज नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, मैंने भी ऐसी गलतियां की थी, इट्स अंडरस्टैंडेबल. एंड ही टेक्स यू, ही जस्ट एक्सेप्ट्स यू, हील्स योर वुंड. लेकिन फिर वो हील होने के बाद फिर वो आपको बैठकर आपसे अच्छी तरह से बात करता है. लेकिन उस टाइम वो भी सही बोलने की स्थिति में, क्योंकि वो रिएक्शन वाला मोड खत्म हो गया है, और आप भी उस टाइम अच्छी तरह से समझने की स्थिति में. और क्योंकि जब आप दर्द में थे तब उसने आपको सपोर्ट दी थी, वो आपकी बात और भी अच्छी तरह से सुनेगा. अगर आप उसे कुछ कहेंगे भी उसे बुरा नहीं लगेगा. लेकिन जब वो दर्द में है और तब आप उसको बोल रहे हैं, तब आपकी सही बात भी
0: समझ ही नहीं आएगी,
1: अच्छी नहीं लगेगी,
0: पहुंच ही नहीं पाएगी,
1: आप अच्छे नहीं लगेंगे उस टाइम, आप ही अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए एक बच्चे को वो पेरेंट उस टाइम अच्छा नहीं लग रहा होता। एक बच्चे के मार्क्स कम आए, एक बच्चा फेल हो जाए, मेजोरिटी ऑफ द चिल्ड्रन हु कमिट सुसाइड, व्हाई डू दे कमिट सुसाइड? बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेसिंग द पेरेंट, नॉट बिकॉज दे फेल्ड। तो रीजन कितना अलग है। आज अगर वो पेरेंट को, जिसका बच्चा चला गया, उसे ये पता चले कि मेरे डर के कारण वो बच्चे ने अपनी जीवन दे दी, वो पेरेंट क्या कहेगा? तुम वापस आ जाओ, मैं तुझे कभी गुस्सा नहीं करूंगा। नाउ व्हाट्स द यूज? दैट्स द पॉइंट। नाउ व्हाट कैन वी डू? वो बच्चे के अंदर पहले से वो विश्वास होना चाहिए था कि माय पेरेंट्स आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट वुड हैव हैपेंड बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेरी कोई भी गलती होगी वो मुझे समझ लेंगे। एंड ऐसे पेरेंट्स हैं, वी हैव दैट काइंड ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, बट देन वी नीड दैट मोर नाउ।
0: यस,
1: गलतियां हो रही है।
0: वी हैव अ कॉलर, यू नो, वी हैड अ कॉलर, क्योंकि बहुत से लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, ईमेल्स आए हैं। इनफैक्ट हमारे साथ मुंबई से शिखा का ये फोन था, और उनकी यही प्रॉब्लम जो आज हम पेरेंट की बात कर रहे हैं कि शी इज गॉट अ डॉटर हु इज 9 ईयर ओल्ड, और वो ये कह रही थी कि शी इज अ वर्किंग वुमन, उनके मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी रह रहे हैं साथ में, मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप क्योंकि इतने साल 10 साल शादी को भी हो गए हैं तो ठीक ठाक है पर कोल्ड है। बेटी को ऑलमोस्ट मदर इन लॉ ने वाला, बिकॉज शी इज अ वर्किंग वुमन।
1: ओके,
0: एंड अब जब 9 साल की बच्ची हो गई है, देन शी सेज, शिखा सेज कि अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि बच्चा तो मेरे हाथ से चला गया है, क्योंकि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन मी my daughter, and now I want to develop this relationship, and she's not interested. Suddenly she has become so rude. मेरे mother-in-law के साथ जो मेरा relationship होता है, उसका response मेरी बेटी के साथ मुझे दिखने लगता है।
1: True.
0: और वो मेरे साथ इतनी बदतमीज़, इतनी कुछ, अब मैं इतनी depression में चली गई हूँ। She was literally crying, you know, when she called up and she said कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि मेरा बच्चा मेरा अपना ही नहीं रहा।
1: True.
0: और नौकरी करना भी मेरी मजबूरी थी क्योंकि पूरा financial सब कुछ depend करता था बाकी सारी चीजें। तो अब मैं क्या करूं, कैसे वो रिलेशनशिप दोबारा डेवलप करूं?
1: फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर खुद डिप्रेशन में है, मतलब खुद बहुत लो फील कर रहे हैं, दूसरे को हील नहीं कर पाएंगे। दूसरे को प्यार देना है वो दे नहीं पाएंगे क्योंकि खुद अंदर नफरत भरी हुई है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन। जो दूसरे को देना चाहते हो वो पहले खुद अपने अंदर भरा हुआ होना चाहिए। अब इनके केस में शायद जो हो रहा है, फर्स्ट फैक्टर इज कि द मदर इन लॉ इज कंट्रोलिंग द चाइल्ड, यू नो दैट समवेयर इन द सबकॉन्शियस दैट इज क्रिएटिंग अ बिगर प्रॉब्लम। यू नो, वो एक एलिमेंट जो बीच में आ रहा है कि मेरी बेटी मेरा ना सुनने के बजाय उनका सुन रही है।
0: लेकिन बेटी के लिए भी बिल्कुल जायज है कि वो बचपन से जो करता
1: है, तो वो एक नेचुरल बॉन्डिंग है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो वो तो एक नेचुरल बॉन्डिंग थी, लेकिन इनको जो अपने आप से सेल्फ टॉक करके अपने आप को वो राइट थिंकिंग पैटर्न पे लाना पड़ेगा कि फाइनली शी इज हर ग्रैंड मदर, she's done so much for her, after all I could work only because she was there. To mera to matlab jaise I should be very grateful to her ki usne unhone itni achhi parvarish karke aaj ye missing element hai, aur isiliye bacche bahut zyada lonely feel karte hain.
0: But you know what she's saying actually, ki wo unki jo parvarish hai wo unhone apne beton ki bhi parvarish koi bahut achhi nahi ki. No, but that's again, she says ki she was an intelligent girl, she says ki wo bacche ko bhi jo kar rahi hai kyunki ab pattern change ho gaya hai, khane ka, peene ka, पढ़ाने का पूरा तरीका बदल गया है। अब जब मैं उसे अपने बच्चे को अपने हिसाब से करना चाहती हूँ, जो कि आज के परिवेश में देखते हुए सही है, तो she doesn't want that.
1: शिखा को क्या करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि अभी वो शायद subtly, subconsciously, वो बच्चे को अपनी ग्रैंड मदर से छीनने की कोशिश कर रही होगी। एंड सिंपल बात यह है कि एक नेगेटिव
0: थॉट प्रोसेस है,
1: एक पॉजिटिव रिजल्ट जेनरेट नहीं कर सकता। अगर हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, उसकी इनपुट भी पॉजिटिव होगी। नेगेटिव इनपुट दे, पॉजिटिव नेगेटिव इनपुट डाले और पॉजिटिव आउटपुट हो, इम्पॉसिबल। तो जहां उनका ये थॉट है, वो परवरिश गलत थी, मुझे उसको उससे अब ले लेना है, शी शुड कम अंडर माई कंट्रोल, शी शुड नॉट लिसन टू हर, शी शुड लिसन टू मी, All the thoughts are going on a different track. तो obviously जब हम negative energy transmit कर रहे हैं इतनी ज्यादा, तो वो बच्चा मेरे करीब आने की बजाय
0: दूर, बहुत दूर हो जाए,
1: और भी दूर, और कहीं ऐसा ना हो कि वो शायद बहुत ज्यादा दूर हो जाए, because I'm sending only negative energy.
0: How, what should
1: negative energy उसको repel करेगी ना? See, negative energy always takes me away from a person. And इस process में वो अपनी mother-in-law से भी बहुत दूर हो जाएंगी, अपने husband से भी हो सकता है कि distance हो जाए, बच्चे से definitely distance हो जाएंगी. तो thought process को एक-एक जो इन्होंने ये thought ली, इसको थोड़ा सा check करें. First, मेरी grandmother, मतलब मेरी mother-in-law ने जो किया, बहुत अच्छा किया. I am grateful to her. And actually go and express your gratitude. दूसरा, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी परवरिश की होगी, उसमें वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, और आज मेरी बेटी जो है वो उनकी वजह से उस तरह से बनी है. थर्ड शी कैन डू इज गो एंड डिस्कस विद हर कि बेबी विद द चेंजिंग टाइम्स डू यू फील इट इज ओके, क्योंकि इट्स नॉट राइट कि जिसने इतनी मेहनत की थी आप जाके उससे कोई चीज को छीन लो. वो बच्चा भी आपके साथ वो रैपो नहीं बिल्ड करेगा. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप एक टीम बनाएं, आप दोनों मिलकर अब उसकी परवरिश करें, और वो बच्चे को इतना वो स्नेह दे, इतना प्यार दे, तो वो ऑटोमेटिकली, मतलब मदर एंड चाइल्ड के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. दिस इज नॉट एन ऑफिस रिलेशनशिप. तो इट इज जस्ट वन, शी इज जस्ट वन स्टेप अवे. सो शी शुड टॉक टू हर मदर इन लॉ एंड मिलकर वो जो उनको चेंजेस लाने हैं परवरिश में, उनके साथ मिलकर करे, उनसे दूर होकर ना करे. तब वो करना बहुत ईजी हो जाएगा एंड शी विल एंजॉय द प्रोसेस एंड ऑल थ्री ऑफ देम will come closer. And the way she's doing it right now, all three of them are going to go absolutely away. And just give lot of love. Lot of love internally. And lot of love internally tab diya jata hai jab koi negative thought nahi hogi. Hum kehte to hai, matlab no mother will say ke I don't love my child. Lekin ye jo sari negative thoughts hai, ye usme ek leakage hai. To jitna ye hat jayengi, aapka jo pyar hai, wo undiluted, you know, एकदम अनअडल्ट्रेटेड है, एब्सोल्युटली प्योर एंड सेल्फलेस. उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है
0: बिल्कुल. और बहुत यू नो, बिकॉज इनकी प्रॉब्लम एक बड़ी जेन्युइन सी प्रॉब्लम लग रही थी, लेकिन इसको इस तरह से इंटरप्रेट करके, आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक यू माइट से कि किसी यू नो लाइक मदर इन लॉ से, या अगर आगे चल के ये भी हो सकता था कि सेपरेट हो जाए, क्योंकि यही प्रोसेस रहते होंगे.
1: बट देन दैट्स डैमेजिंग ना.
0: यस,
1: आज एक, और इसीलिए इसी प्रोसेस की वजह से आज हम ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में आ गए. हमने ये सोचा कि न्यूक्लियर फैमिली इज बेटर, नाउ वी रियलाइज नो, दैट्स ऑल्सो a failure. Because everything that was there was for a purpose. Lekin humne uske benefits dekhne ki bajaye humne socha nahi hum ab hum apne aap hi paal lenge na, hum akele reh lenge na, inki interference ko kaun tolerate karega.
0: Definitely. Aur ek bar phir humne thought power ki jo power hai uska example dekha, samne aaya ki jis cheez ko उनके लिए कितनी बड़ी समस्या है और कितना जेन्युइन, किसी भी काउंसलर के पास जाएंगे तो उन्हें भी वो जेन्युइन ही लगेगा, लेकिन वो जो नेगेटिविटी इनके अंदर खुद ही जनरेट,
1: और वो खुद ही उसको पॉजिटिव कर लेंगे,
0: कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है. तो ससे शिवानी, आज एक बार फिर एंगर को, हमने एंगर के एस्पेक्ट्स को लेने की कोशिश की, और ये बात क्लियर होती जा रही है कंटिन्यूअसली, यू नो, कि हमारे रॉन्ग बिलीव्स जो हैं वो गलत थॉट्स जनरेट करते हैं, गलत एनर्जी जनरेट करते हैं, एंड नेगेटिव एनर्जी एक्चुअली रिपेयर्स, एंड देन पॉजिटिव थॉट्स विल क्रिएट पॉजिटिव डेस्टिनी. थैंक यू सो मच. और आपको बता दें कि देखिए, जैसे कितने सारे हमारे पास लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, हम उन्हें प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करते हैं, तो आपका भी स्वागत करते हैं. और कोशिश हम ये करें हर रोज, जैसा कि सिस्टर शिवानी बता रही हैं, कि पॉजिटिव थॉट्स को ही जनरेट करने की कोशिश करें. इसके लिए यही जरूरी है कि अपने बिलीव्स, अपनी मान्यताओं को सही रखें. आप हमें कॉल कैसे कर सकते हैं, फोन कीजिए 9873 666 555 पर, और अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. तो फिर अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी फिर आपके साथ होगा, लेकिन फिलहाल दीजिए इजाजत. नमस्कार.

नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को मथानी लेकर पानी की बाल्टी को बिलोते हुए देखा है? वह सुबह से शाम तक पूरी ताकत लगाकर उस पानी को मथ रहा है और इस उम्मीद में बैठा है कि अभी इसमें से ढेर सारा मक्खन और सुगंधित घी निकलेगा। आप ही बताइए, यदि आप ऐसे इंसान को देखेंगे तो क्या कहेंगे? यही ना कि पानी में तो घी का कोई गुण नहीं है, चाहे तुम सदियों तक पानी को मथते रहो, उसमें से घी का एक कतरा भी नहीं निकलने वाला। घी निकलने के लिए दूध और दही चाहिए, पानी नहीं। लेकिन हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ठीक यही नादानी करते हैं। हमारा यह जो मन है, यह 24 घंटे ऐसी ऐसी व्यर्थ की योजनाओं, चिंताओं और इच्छाओं की मथानी चलाता रहता है, जिनका वास्तविकता और कुदरत के नियमों से कोई लेना देना नहीं। हम सोचते हैं कि जैसा हम चाहेंगे पूरी दुनिया वैसे ही चलेगी। कबीर साहब आज हमें इसी व्यर्थ के तनाव से मुक्त करने और उस परम अवस्था को स्वीकारने का सूत्र दे रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह आंखें खोल देने वाला सूत्र। मनह मनोरथ छांडी दे, तेरा कियान होए। पानी माही घिउ निक से, तो रूखा खाई न कोई। मनह मनोरथ छांडी दे, तेरा कियान कोई।

वनिक से तो रूखा खाए न कोई रे साधो, तो रूखा खाए न कोई। श्रोताओं, कबीर साहब मन के व्यर्थ के ताने बाने को तोड़ते हुए कहते हैं, मन मनोरथ छांडी दे। हे मनुष्य, तू अपने इस मनह यानी मन के इन अंतहीन मनोरथ यानी काल्पनिक इच्छाओं, चिंताओं और व्यर्थ की योजनाओं के जाल को तोड़ दे, छोड़ दे, इनसे मुक्त हो जा। तेरा किया न होई, क्योंकि केवल तेरा किया यानी तेरे अहंकार और तेरे अकेले चाहने से यह विशाल सृष्टि नहीं चलती। यहाँ जो कुछ भी घटित होता है वह उस परमात्मा के परम विधान और प्रारब्ध के अनुसार होता है। इस प्राकृतिक नियम को अगली पंक्ति में कबीर एक अत्यंत जीवंत उदाहरण देकर समझाते हैं, पानी माही घिव निकसे। यदि किसी के केवल चाहने भर से या असंभव प्रयास से पानी माही यानी पानी को मथने से घिव यानी घिव घी निकलना संभव होता तो रूखा खाए न कोई। तो फिर इस संसार में कोई भी इंसान रूखा यानी सूखी रोटी क्यों खाता? हर कोई पानी बिलो कर अपनी रोटी पर घी चुपड़ लेता। लेकिन कुदरत का यह अटल नियम है, दूध मथने से ही घी निकलता है, पानी से नहीं। ठीक उसी तरह केवल मन के घोड़े दौड़ाने से जीवन की हकीकत नहीं बदलती। यह दोहा अहंकार, अहंकार त्याग और शरणागति का महान सिद्धांत है। भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति अपने नियमों से काम करती हैं, मनुष्य केवल व्यर्थ में खुद को कर्ता मानकर दुखी होता रहता है। मनोरथ हमारे वे मानसिक भ्रम हैं जहां हम सोचते हैं कि हम पूरे विश्व को, पूरे भविष्य को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकते हैं। कबीर यहाँ यह नहीं कह रहे हैं कि आप कर्म करना छोड़ दें, वे कह रहे हैं कि कर्म करते हुए भी फल और परिस्थितियों को नियंत्रित करने की जो झूठी जिद है उसे छोड़ दीजिए। जब आप इस व्यर्थ के कर्ता भाव को छोड़ देते हैं तो जीवन में एक गहरी शांति और सहजता का जन्म होता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर अपनी चिंताओं की गठरी को खोल कर देखिए। हम दिन रात जिन बातों को लेकर तनाव में रहते हैं, बीपी बढ़ाते हैं और अपनी नींद खराब करते हैं, सोचिए कि उनमें से कितनी बातें सचमुच हमारे हाथ में हैं। हम पानी मथकर घी निकालने की जिद में अपनी आज की ताजगी को बर्बाद कर रहे हैं। आज कोशिश कीजिए इस व्यर्थ के मानसिक बोझ को विसर्जित करने की। अपना श्रेष्ठ कर्म कीजिए लेकिन परिणाम की चिंता उस विधाता के हाथों में सौंप दीजिए। उस राम नाम की व्यवस्था पर भरोसा रखिए जो हर पत्ते को उसकी सह जगह पर थामे हुए हैं। जब आप अपनी योजनाओं की जिद छोड़कर परमात्मा की रजा में राजी होना सीख जाएंगे तो आपका जीवन चिंताओं के भंवर से निकलकर परम विश्राम और आनंद के सरोवर में ठहर जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम।

नमस्कार, ओम शांति। पसायदान, संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर जी माउली, उनका पसायदान, उनमें नौ चरण है, नौ श्लोक है, नौ ओवी है, और नौ ओवी का चिंतन हम कर रहे हैं। जब हम ये शेयर करते हैं तब बहुत सारे लोगों का फीडबैक आता है मुझे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का, मेरे दोस्तों का, कि बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में ये प्रश्न है कि नौ ओवी है, नौ चरण है, और उसके ऊपर अगर हमें पार्ट बनाने हैं तो ज्यादा से ज्यादा नौ और इंट्रोडक्शन दो तीन, ऐसे 12-13 पार्ट हो जाएंगे तो सफिशियंट है। आपको क्या लगता है? ये जो उद्देश्य था पसायदान आपके साथ शेयर करने का, उसका उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है कि शब्दार्थ आपके साथ शेयर करें, शब्दार्थ तो है ही, लेकिन ये माउली का शब्द जो है, हर एक शब्द, एक एक शब्द जो है, उसका प्रयोग उन्होंने जो किया है, मुझे लगता है उसमें गहनता है। और अगर हम गहनता जान लेने की कोशिश करेंगे, जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे, मैं ये दावा बिल्कुल नहीं करूंगा कि मैं जड़ तक जा पा रहा हूं, लेकिन आप जा पाएंगे। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि इसमें से क्या ज्ञान आपको मिलता है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आपके विचारों को कुछ दिशा देनी है। आप मेरे से भी काफी ज्ञानी हैं, ऐसे बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, लेकिन उसके ऊपर चिंतन करने के लिए कुछ अगर अच्छी दिशा मिले तो और भी कुछ रत्न निकल सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसलिए आज हमारा 10वां एपिसोड है, 10वां पार्ट है, और हमारे चरण ओवी जो है, तीसरी भी अभी पूरी नहीं हुई। दुरितान से तिमिर जावो, विश्वस्व धर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात। हमने दुरित, तिमिर और विश्व, उसके ऊपर चिंतन किया, फिर विश्व के बाद स्वधर्म, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, स्वधर्म के ऊपर भी हमने चिंतन किया। विश्व के ऊपर आज जैसे मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैठा था तब ऐसे मेरे मन में एक ख्याल आया कि मराठी में बहुत बार हम कुछ शब्द प्रयोग करते हैं, उसका अर्थ समझने की कोशिश भी नहीं करते। हम मराठी में अगर किसी के पास दरिद्रता है तो हम ये शब्द प्रयोग करते हैं, 18 विश्वे दारिद्र्य। आज मेरे मन में प्रश्न आया कि ये 18 विश्वे दारिद्र्य, 18 विश्व कहां से आए, उसके पीछे का अर्थ क्या है। कोई भी भाषा है उसके जो शब्द प्रयोग, वाक प्रचार बोलते हैं, सेइंग, उसके पीछे कुछ ना कुछ सत्य छिपा हुआ रहता है, और यह सत्य हमें उजागर करना है। और ये पसायदान के आपके साथ शेयर करने का उद्देश्य यह है। हम ये 18 विश्व के ऊपर अभी ये विषय नहीं है हमारा चिंतन का, ऐसे ही मेरे मन में प्रश्न आया तो आपके साथ शेयर किया। तो ऐसे हरेक शब्द का प्रयोग जो माउली ने किया है, माउली तो योगी राज है, ऊपर से बहुत शब्द जो है आसान दिखेंगे, उसका अर्थ तो जैसे मैंने कहा 5 मिनट में एक ही पार्ट में पूरा हो जाएगा, लेकिन जैसे माँ का प्यार होता है उसको डिफाइन नहीं कर सकते, वैसे ये माउली का जो पसायदान है, नौ ओवी, नौ चरण, हर एक शब्द मुझे इतना आकर्षित करता है, इतना अच्छा लगता है कि इसके ऊपर कितनी भी बात करे, कितना भी चिंतन करे, वो भी कम है। तो ये ऐसा विश्व के ऊपर हमने कुछ चिंतन किया, अभी हम चिंतन कर रहे हैं सूर्य के ऊपर, विश्व स्वधर्मे, विश्व हो गया, स्वधर्म हो गया, सूर्य पाहो। अभी ये विश्व जो है वो सूर्य को क्या देखेगा,
स्वधर्म तो ठीक है, जैसे कई लोग कहते हैं कि स्वधर्म मीन्स अपना धर्म, लेकिन ये स्वधर्म क्या है इसके ऊपर भी चिंतन किया तो ये विश्व सूर्य को क्या देखेगा? सूरज को तो हम रोज देखते हैं, सुबह देखते हैं, शाम को सूरज डूब जाता है, सूरज उगता है और सूरज डूबता है, लेकिन वो ना कभी उगता है ना कभी डूबता है। हम सूरज के तरफ मुंह मोड़ लेते हैं तो शाम हो जाती है, और मुंह करते हैं तो दिन आ जाता है। तो ये सब चीजें जो है, ये सूरज सूरज जो कहते हैं, तो मावली को अभिप्रेत क्या है? ये सूरज है सन। और मजे की बात देखिए, सन जो है, सन इज वन। आप अमेरिका में जाओ तो सन है, इंग्लैंड में जाओ तो सन है, ऑस्ट्रेलिया में जाओ सन है, भारत में रहो सन है, सूरज है। उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन है एक ही। कार्य क्या करता है? ऊर्जा देता है, 24/7 ऊर्जा देता है, भले आपको मिले या ना मिले वो तो बात अलग है, लेकिन वो तो देते रहता है। और ऐसा सूरज जो है उसे हमने भगवान का रूप दिया है। मुझे याद है जब बचपन में मैं सूर्य नमस्कार, महाराष्ट्र में है, बहुत जगह है, भारत में है, सूर्य नमस्कार एक अष्टांग योग है। और बचपन में मैं, मेरे पिताजी मुझे इंस्पायर करते थे, पिताजी ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी थी, और मैं 108 नमस्कार डालता था, सूर्य नमस्कार। ये सूर्य नमस्कार होने के बाद वो तीर्थ लेते थे, और ये तीर्थ में एक बहुत अच्छा श्लोक है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम सूर्य पादोदकम तीर्थम जठरेत धारयाम्यहम्। सूर्य पादोदकम, सूरज के पावत जो है, सूरज का चरणों का तीर्थ जो है, वो अगर मैं मेरे जठर में, मेरे पेट में धारण करता हूं तो मेरा अकाल मृत्यु हरणम, मेरा अकाल मृत्यु निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। जितनी व्याधि है, सर्व व्याधि, उनका विनाश हो जाएगा। कब? जब मैं सूरज के पादुका चरणों का तीर्थ मेरे जठर में धारण करता हूं। अब ये सूरज का पाव कहाँ है, सूरज के चरण कहाँ है, उनका तीर्थ क्या है, और उसके पीछे की भावना क्या है, इसके ऊपर भी अलग से चिंतन होना। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, ये सूरज जो है, क्या यही सूरज है ज्ञानेश्वर को अभिप्रेत? अगर यही सूरज है तो विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो ये मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा विश्व जो है सूरज को देखता ही है। ज्ञानेश्वर जी के पहले भी देखता था, बाद में भी देखता है, अभी 700 साल पूरे हो गए, आज भी हम सूरज को देखते हैं, सारा विश्व देखता है। फिर विश्व स्वधर्म सूर्य पाओ, ऐसे परमात्मा के पास रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? इसके ऊपर हम जरूर चिंतन करेंगे, सूरज क्या है इसके ऊपर चर्चा करेंगे, विवेचन करेंगे और विचार सागर मंथन करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, ओम शांति।

नमस्कार, ओम शांति। विश्व स्वधर्मे सूर्ये पाहो, इसके ऊपर हमारी चर्चा शुरू थी। हमने विश्व के बारे में चिंतन किया, स्वधर्म के बारे में चिंतन किया और पिछले एपिसोड में सूर्य के बारे में भी चिंतन किया। हमने ये देखा कि मावली को सूर्य अभिप्रेत था। यह ग्रह सूर्य जो शब्द का प्रयोग किया है वह सिर्फ लिमिटेड है सूर्य ग्रह के हिसाब से या और कुछ अलग है, इसके ऊपर भी हमने चिंतन किया। अभी हम उसको तीनों को जोड़ेंगे, सूर्य को देखा, स्वधर्म को देखा, विश्व को देखा। अभी विश्व स्वधर्म सूर्य तीनों को अगर जोड़ के देखेंगे तो हमें और उस गहनता तक जाने के लिए मदद मिलेगी। देखिए, सूर्य जो है ग्रह माले का जो सोलर सिस्टम है उसमें से ग्रह सूर्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज इट गिव्स एनर्जी टू एवरीबडी। कंटिन्यूअस एनर्जी उससे मिलती है, उसके सोलर एनर्जी बोलते हैं, और इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं रहता। भले हम सन कहेंगे, सूरज कहेंगे, सूर्य कहेंगे, और कोई भाषा में और कुछ कहेंगे, लेकिन उससे कोई ये मेरा सूरज है, ये आपका सूरज है, ये मेरा सन है, ऐसा कभी डिस्प्यूट सुना है हमने? नहीं है। सूरज जो है उससे एनर्जी हर कोई लेता है एंड एवरीबडी इज हैप्पी। भले किसी से ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं, भारतीय संस्कृति में सूरज को भगवान का रूप दिया गया है और सूरज को इसलिए भगवान मानते हैं। अभी ये सूरज जो है उसे भगवान मानते हैं, लेकिन सचमुच ही भगवान है या भगवान कोई और कोई है? सूरज की उपमा दी है क्योंकि जैसे सूरज सर्व ग्रहों में श्रेष्ठ है वैसे भगवान भी सबसे ऊंचा है, इसलिए ऊपर वाला सर्वशक्तिमान कहते हैं उनसे। और मुझे लगता है मावली ने जो सूर्य का शब्द प्रयोग किया है उसके पीछे यही राज है। उनको सूरज जो अभिप्रेत है, विश्व स्वधर्मे सूर्ये पाहो, ये सूर्य जो है वो भगवान के बारे में, वो भगवान को देखते हैं और वो अभिप्रेत है उनको। अभी अगर सूरज इक्वल टू भगवान और भगवान इक्वल टू सूरज और भगवान का नाम ही सूरज, ऐसे अगर विश्व स्वधर्म में सूर्य पाहो में है तो अभी पूरा का पूरा अर्थ देख लीजिए। विश्व, सारे विश्व में भगवान के अलग अलग रूप है, भगवान की अलग अलग मान्यताएं है, नाम अलग अलग है, पहचान अलग अलग है, और शायद सही पहचान न होने के कारण या अलग अलग पहचान होने के कारण या उसके जो कर्म है वो अलग अलग होने के कारण या उसका जो कार्य है उसका पूरा पूरा ज्ञान न होने के कारण शायद हमारे में लड़ाई है, झगड़ा है। ये हमारा भगवान है, ये आपका भगवान है, और ऐसे नहीं कि सिर्फ चार धर्म जो है मेन मुख्य धर्म जो मानते हैं हम चार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें भगवान अलग है, ऐसे नहीं है। अभी हिंदुओं में भी इतने देवताएं हैं, फिर भगवान क्या है, देवता क्या है, ये भी कंफ्यूजन है। और इसलिए सूर्य जो है, सूर्य के बारे में कभी कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान के बारे में है। अगर भगवान इक्वल टू सूरज और सूरज इक्वल टू भगवान ये हम सोचते हैं तो विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो। शायद मुझे ऐसे लगता है मावली को ये अभिप्रेत है कि अगर जिस दिन सारा विश्व
अपने स्वधर्म में स्थित, स्वधर्म मीन्स आत्मा का धर्म, शांति का धर्म। आत्मा का धर्म है शांति, पिछले एपिसोड में हमने देखा था। तो आत्मिक स्थिति में सारा विश्व अगर स्थित हो जाता है और सूर्य जो है, भगवान जो है, उनको देखता है, तो भगवान का सही ज्ञान सबको हो जाता है। विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, और ये रिक्वेस्ट या ये विजन एक दिन ऐसे आएगा। माउली को भी लगता है कि सारा विश्व जो है, हम सिर्फ कहते हैं गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, सत्य, सत्यमेव जयते, भगवान की विजय होगी, अंतिम विजय भगवान की होगी। अगर भगवान सत्य है, गॉड इज ट्रुथ, ये सही है, तो विजय किसकी होगी? अंतिम भगवान की होगी। और यही विजय जो है, और इसलिए देखिए सत्य युग कहा जाता है। भगवान को सत्य कहते हैं और युग को भी सत्य कहते हैं। और पांडव, देखिए पांडव में भले ही उनका जो श्रेष्ठ था, पांडव में बड़ा दादा, उसका नाम था युधिष्ठिर, लेकिन उनको भी कहते हैं धर्मराज। तो ये धर्म हो या सत्य हो या भगवान हो, उनकी विजय होगी, मीन्स जो अच्छाई की बुराई पर विजय होगी। और ये स्वधर्मे, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, सारा विश्व जो एक मुख से अगर भगवान को पहचान लेगा, ज्ञान भगवान के बारे में मिलेगा, तो क्या होगा? बुराई रहेगी नहीं, कोई लड़ाई नहीं रहेगी, कोई दुराचार नहीं रहेगा, कोई अशांति नहीं रहेगी, और सब अपने शांत स्वभाव में, शांति के धर्म में स्थित हो जाएंगे। तो सबके विचार क्या होंगे? विचार भी एक होंगे। और इसलिए बोलते हैं एक विचार तो एक आचार हो जाएगा, एक उच्चार हो जाएगा, और सब जहां एक होते हैं, यूनिटी। जब यूनिटी हो जाती है, तब हर चीज आसान हो जाती है, और विश्व परिवर्तन जो है वो भी आसान हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा था, माउली का जो पसायदान है, उसमें जो रोड मैप है या रिक्वेस्ट है, तो ये रोड मैप यहां पूरा हो जाता है। सब्जेक्ट टू कंडीशंस क्या क्या है? आता विश्वात्मके देवे, उन्होंने विश्वात्मक देव को बताया, मांगा, येने वाग यज्ञ तोषावे, मेरे वाग यज्ञ जो है उससे आप संतुष्ट हो जाओ, और मुझे पसाय दान दो, मुझे दान दो, मुझे क्या दो? ब्लेसिंग्स दो, मुझे आशीर्वाद दो। आता विश्वात्मके देवे, येने वाग यज्ञ तोषावे, तोषो निमज द्यावे पसाय दाने, जे खळांची व्यंकटी सांडू, तया सत्कर्मी रती वाढू, भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे। ये भी देखा हमने। फिर दुरितांचे तिमिर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। ये जब हो जाएगा, तब स्वर्ग आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा। और ये सतयुग कैसा है, उसका वर्णन अगले कड़ी में। तो ये जो ओवी है, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, उसके ऊपर जब चिंतन करेंगे, तब लगता है, मुझे लगता है कि ये कंडीशन हो जाएगी। विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, सब एक रूप हो जाएंगे, एक मुख से बोलने लगेंगे, तो आगे क्या होगा? जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात। आजकल हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सब होता नहीं है। हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, क्योंकि शायद ऐसे कहते हैं कि आपकी इच्छा आपको अच्छा नहीं बना देती। और जब मुझे पूरा ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तो कोई इच्छा ही नहीं रहती और सब अच्छा हो जाता है। इसलिए जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात, क्योंकि इच्छा ही अच्छी होगी।
आजकल हमारी इच्छाएं अच्छी होगी उसकी गारंटी नहीं है, इसलिए कभी होती है पूर्ण या कभी नहीं होती है। लेकिन वो स्टेज जो माउली को अभिप्रेत है, जब विश्व स्वधर्म में, सारा विश्व अपने स्वधर्म में स्थित होके सूरज को देखने लगेगा, पहचानने लगेगा, तब जो मन में इच्छा है, जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात, ये पूर्ण हो जाएगा। और फिर कैसे होगा, ये स्वर्ग का रोड मैप कैसे होगा, स्वर्ग का दर्शन कैसे होगा, वो अगले कड़ी में हम देखेंगे। तो यहां अपनी चर्चा हम पूरी करेंगे, विश्व स्वधर्म में सूर्य पाहो, और अगले कड़ी में अगले चरण के ऊपर चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम शांति।

0: नमस्कार और स्वागत करते हैं आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज में। बहुत से फोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं, बहुत से ईमेल्स आ रहे हैं और ये बात हमें समझ में आ रही है कि जिन मूल्यों की हम बातें कर रहे हैं, जिंदगी के जिन मुद्दों को हम जान रहे हैं, जिनके आंसर्स तलाश रहे हैं, उसमें कई कई मुश्किलें आपके सामने आ रही हैं जब उन्हें हम प्रैक्टिकली हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी फिर से हैं, उनका स्वागत करते हैं।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति शिवानी। और सबसे पहली बात आज, क्योंकि शुरुआत ही मैंने सीधे इससे की है कि हमने खुशी की बात की थी, हमने टेंशन की बात की थी, एंगर की बात की थी और जिस तरह का हमारे पास रिस्पॉन्स आया हमारे दर्शकों का, उससे तो मतलब लग रहा है कि लोग जो है वो बहुत मोटिवेटेड हो गए हैं, जैसे मैं भी बहुत मोटिवेटेड रही हूँ कि इसे इम्प्लीमेंट करने का, बात करने में। क्योंकि सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि बात समझ में आ जाए, समझ आ रही है लेकिन वो कंटिन्यूअस इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, खासकर एंगर के ऊपर जो हमने बात की थी, जो रॉन्ग मिथ्स हैं, यू नो रॉन्ग नोशंस को लेकर हम चल रहे थे। पीपल हैव अंडरस्टूड दैट, यू नो, बिकॉज़ आई आल्सो अंडरस्टूड कि दे आर रॉन्ग, क्योंकि हम कहीं खुश नहीं हो रहे थे गुस्सा कर।
1: आपने देखा लेकिन कल अपने आप को
0: कि गुस्सा ना करूं मैं। हाँ, बिल्कुल, मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की लेकिन मुझे जो मुश्किल ये आई कि मेरे साथ गुस्से का ये था कि अगर मुझे काम निकलवाना है तो मुझे थोड़ा गुस्सा करना चाहिए, ये मैं मानती थी और मैंने कोशिश की कि मैं गुस्सा ना करूं और प्यार से कोशिश करूं, लेकिन वही पेशेंस चाहिए उसके लिए। और अल्टीमेटली आई रियलाइज कि मैं फिर बहुत ही यू नो लाइक सॉफ्ट हो गई, तो वो काम ही नहीं हुआ फिर।
1: True.
0: तो उसमें मुझे ये एक मुद्दा जो है कि गुस्सा ना करके, लेकिन अथॉरिटी तो रखनी चाहिए ना।
1: True.
0: वो कहीं वो बैलेंस
1: ये लेकिन जो ज्यादातर हमने देखा ना, जैसे आपके पास जो क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हम फिनिश करना चाहते हैं

0: लेगा. तो चाहे जितनी भी हैबिट पड़ी हुई हो,
1: भाई
0: लोग सिगरेट छोड़ते हैं तो एक मिनट में छोड़ते हैं.
1: वो भी तो करते हैं. वो 1 मिनट कौन सा चाहिए, वो रियलाइजेशन कौन सी चाहिए, जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये मेरे काम की चीज नहीं है. अभी हम क्या कहते हैं, गुस्सा अच्छा नहीं है, गुस्सा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो गुस्सा करना पड़ता है. ये जो थोड़ा थोड़ा गुस्सा करना पड़ता है, जब तक ये मेरे पास बिलीफ होगा तो वो चीज मैंने अपने पास संभाल के रखी हुई है. जैसे घर में सामान संभाल के रखते हैं, पता नहीं कब काम आ जाए, यू नो, एंड इन द प्रोसेस वी फिल अप आवर हाउस विद
0: सो मेनी थिंग्स व्हिच आर और कभी काम नहीं आती,
1: बिकॉज़ वी हैव केप्ट दैट थॉट कि पता नहीं कब काम में आ जाए. और एक्चुअली उसको बाहर फेंकने में कितना टाइम लगता, जिस दिन सोचा कि ये अब मेरे काम बिल्कुल नहीं आने वाला, हम उसे उठाते हैं और बाहर फेंक देते हैं. गुस्सा पता नहीं कब मेरे काम आ जाए. कई ऐसी बातें होंगी जब मुझे थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो करना ही पड़ेगा. यू नो दीज जो थॉट्स हैं कि बिल्कुल खत्म कैसे हो सकता है, यू नो इट्स डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूं. हाउ इज दैट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इट्स नॉट पॉसिबल. यू नो ये जो पूरी सीरीज ऑफ थॉट्स चलती है कि आज की दुनिया में सबके साथ काम करते हुए पॉसिबल नहीं है,
0: काम नहीं निकलवा पाऊंगी मैं, कहीं का गुस्सा तो करना ही पड़ेगा.
1: और बाकी लोग नहीं तो मेरा अनड्यू एडवांटेज ले रहेंगे, मुझे एक्सप्लॉइट करने लगेंगे, तो थोड़ा तो गुस्सा चाहिए. अब जब तक वो थोड़ा तो गुस्सा चाहिए तो फिर वो अंदर संभाल के रखा हुआ है. फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मुझे नहीं चाहिए लेकिन मुझे थोड़ा तो चाहिए. अगेन वी आर ऑलवेज इन दीज कॉन्ट्रडिक्शंस. मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं करना लेकिन मुझे थोड़ा तो चाहिए. खुद ही चूज किया, खुद ही उसे संभाल के रखा, तो वो आपके पास ही रहेगा. जिस क्षण आप कहेंगे कि अब मुझे ये
0: पूरी
1: बिल्कुल नहीं चाहिए, ये मेरे काम की चीज नहीं है, मैं हर काम और हर व्यक्ति से इसके बिना डील कर सकता हूँ, इट्स गॉन.
0: Great.
1: That, it's really gone.
0: But I think for that, we have to be internally very strong.
1: So. No, we just have to get convinced actually. We don't even need to be strong. Because I just need to get convinced. I don't need it. We're not convinced. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि we are not convinced कि we can work without that. और वो अपने आप को कन्विंस करना, I will have to take myself through, you know, a few days of experiment. कि हर स्टेप पर देखे, पहली बिलीफ कि गुस्सा तो चाहिए, चेक करें, या गुस्सा तो नॉर्मल है, चेक करें करके अभी क्या हो रहा है, कर रहे हैं और आगे काम करते जा रहे हैं, वी नॉट स्टॉपिंग एंड चेकिंग. गुस्सा करने के बाद कैसा फील हुआ, अच्छा लग रहा है, बॉडी इज फीलिंग ओके. आज डॉक्टर भी हमें बता रहा है कि एक क्षण का गुस्सा भी आपके ब्रेन से लेकर पूरे नर्वस सिस्टम और हर अपने शरीर के ऑर्गन पर इतना नुकसान कर रहा है. हाउ कैन इट बी गुड, जो चीज इतना डैमेज फिजिकली कर रही है वो इंटरनली कितना डैमेज कर रही होगी. हाउ कैन इट बी गुड, आई एम स्प्रेडिंग सो मच नेगेटिविटी इन द एनवायरमेंट, मेरे रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं, हाउ कैन आई कॉल दैट थिंग गुड. उससे गुड कौन सी चीज निकल रही है, आई विल हैव टू आस्क मायसेल्फ. जब मैंने गुस्सा किया उसके बाद स्टॉप चेक, इसमें से गुड कौन सा निकला, जो मैं सारा दिन अपने आप से कह रही हूँ गुस्सा करना अच्छा है, थोड़ा तो गुस्सा करना पड़ेगा. Point out and write it down. What was the good that came out now? If it really came out, use it next time. If it didn't, tell yourself, no good. Jitni baar apne aap ko har paristhiti mein check karenge and apne aap se baat karke kahenge, no good. Again, this time, no good. Over a period of time, I will convince myself. Dekho, dusron ko hum kaise convince karte hain? Apne aap ko bhi to convince karna padega. Kyunki we cannot change other people.
0: We have to change ourselves.
1: Unfortunately, पूरी जीवन औरों को बदलने की कोशिश में निकल जाती है और इतना टाइम और एनर्जी इसमें इन्वेस्ट हो जाता है कि अपने लिए टाइम और एनर्जी नहीं है. दूसरों को सलाह देना बहुत ईजी है, आप ये मत कीजिए, आप उन्होंने ये कह दिया कोई बात नहीं, आप भूल जाइए, आप भूल जाइए. हमें कुछ कोई कह देता है, अपने आप को कहना कितना ईजी मुश्किल लगता है, भूल जाइए कोई बात नहीं. काउंसिल योर सेल्फ, दैट्स मेडिटेशन. सेल्फ काउंसलिंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन. टॉकिंग टू, आप देखिए काउंसलर कभी भी नेगेटिव टॉक नहीं करेगा, आप बुरे हो, काउंसलर कभी नहीं कहेगा, कहेगा आप ठीक हो बिल्कुल, आप बस इसको ऐसा थोड़ा सा करो. यू कैन टेल योर सेल्फ दैट. हमें किसी काउंसलर के पास या किसी साइकेट्रिस्ट के पास काउंसलिंग के लिए या इवन किसी पड़ोसी के पास या किसी फ्रेंड के पास काउंसलिंग के लिए जाने की क्या जरूरत पड़ रही है, क्योंकि वी कैन नॉट काउंसिल आवर सेल्फ. एंड फाइनली एक्चुअली बहुत ज्यादा हमारी कोई और काउंसलिंग नहीं कर सकता. अगर आप मुझे बैठकर अभी बहुत अच्छी राय दे भी, मुझे सुनने में अच्छी भी लगे, बट आई विल स्टिल गो बैक विद माय ओल्ड बिलीफ कि आप तो ठीक कह रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है जी मेरे बच्चे कैसे, जी आपको नहीं पता.

0: पता, आपके हस्बैंड वैसे नहीं है ना, आपको नहीं पता मेरे हस्बैंड कैसे हैं, तो मेरे हस्बैंड कैसे हैं वो अगर मुझे ही सिर्फ पता है तो फिर मेरी काउंसलिंग
1: मैं अपने आप
0: मुझे ही करनी
1: कर। अच्छा,
0: पड़ेगी।
1: लेकिन जब हम, बहुत अच्छी आपने ये बात कही कि जब हम काउंसलर के पास जाते हैं तो कभी भी वो नेगेटिव नहीं
0: हाँ,
1: बताते,
0: नेगेटिव
1: तो
0: नहीं
1: लेकिन
0: होगा,
1: जब हम अपने आप से बात करते हैं तो पहली चीजें अपनी नेगेटिव
0: नेगेटिव, और इसीलिए तो हम अपने आप
1: और
0: से बात
1: डिप्रेशन में चले
0: करना
1: जाते, डरते
0: डर
1: हैं।
0: लगते हैं, बिकॉज जैसे ही हम बैठते हैं अपने आप से हम बहुत सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं,
1: हाँ, सब कुछ नेगेटिव दिखने लगता है।
0: राइट, एंड देन इट्स लाइक ये अच्छा नहीं है, एंड आई मूव आउट, एंड आई मूव आउट, जो वो हमने उस दिन बात की कि रोशनी में फिर उस चीज को तलाश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंदर जैसे ही ट्राई किया तो बड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा
1: डर
0: था।
1: डर लग
0: या
1: गया थी।
0: तो एट एवरी स्टेप अपने बिलीफ को चेक कीजिए, एंगर इज गुड, नो। जब आप 8-10 परिस्थितियों से गुजरेंगे और हर टाइम, क्योंकि गुड कभी हो नहीं सकता वो, तो हर टाइम जब आपका फाइनल एनालिसिस निकलेगा, नो इट वॉज नॉट गुड, वॉट गुड केम आउट ऑफ इट, वॉट गुड केम आउट ऑफ इट, नथिंग, धीरे धीरे यू विल टेल योर सेल्फ येस दिस बिलीफ वॉज रॉन्ग। पहले तो इसको साइड करो कि एंगर इज नॉट गुड, सेकेंड दूसरे ने किया तो मुझे भी करना
1: करना
0: ही
1: ही है।
0: होगा, चेक योर सेल्फ जस्ट टूडे मॉर्निंग, मतलब एवरी डे मॉर्निंग डिसाइड इरिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर हैपन्स, यू विल हैव टू प्रोग्राम, दिस इज प्रोग्रामिंग, आपको सुबह उठकर अपने आप से एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, अगर करना चाहते हैं आज, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी सामने आ जाए, चाहे कोई कुछ भी बोल दे, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा।
1: लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम ये आती है, पीयर प्रेशर, सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दे, मैं चुप रह जाऊं तो लोग क्या सोचेंगे।
0: आप ये सोच रहे हैं कि लोग ये सोचते हैं कि गुस्सा एक ताकत है, ये आप सोच रहे हैं, एक्चुअली लोग ये नहीं सोचते। जस्ट विजुअलाइज अ सीन, आप अपने आप को सिचुएशन में डालने की जगह सिचुएशन से डिटैच हो जाइए, उसमें खड़े होने की बजाय उन लोगों के साथ जाके खड़े हो जाइए, ना, बी अ पार्ट ऑफ द ऑडियंस। आपके सामने कोई आया बहुत जोर जोर से गुस्सा कर रहा है, या यू आर द ऑडियंस, मेरे सामने कोई अभी आया बहुत जोर जोर से गुस्सा कर रहा है, यू आर वॉचिंग द सीन, ठीक है, एज एन ऑब्जर्वर, दिस इज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर, एंड यू वॉच माई, वॉच मी नाउ, कि मैं शायद नहीं गुस्सा करूँ ऊपर से, एंड आई रिमेन वेरी काम दैट टाइम, एंड आई कैन जस्ट स्माइल बैक, एंड आफ्टर सम टाइम वेन दैट पर्सन गेट्स ओके, देन आई विल गो एंड टॉक टू हिम एंड से वॉट आई वॉन्ट। यू आर एन ऑब्जर्वर, आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि एम
1: You're a
0: आई
1: strong
0: वीक,
1: person. You're a
0: योर
1: strong.
0: कंक्लूजन वॉज आई एम स्ट्रॉन्ग, बट आई कीप थिंकिंग, सी दिस इज रॉन्ग बिलीफ, मैं ये सोचूंगी कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं कमजोर हूं, और आपको प्रूफ करने के लिए मैं चिल्लाना शुरू कर दूं, एंड फाइनली डाउन द लाइन मुझे क्या फर्क पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हैं, इवन अगर आप सोचें कि आप मैं कमजोर हूं, दैट्स फाइन, वो आपकी सोच है, अगर मुझे ऐसा रहकर अच्छा लग रहा है, इफ आई फील मोर एनर्जाइज्ड, क्योंकि गुस्सा करने के बाद आई एम डिस्चार्ज्ड, आई एम एब्सोल्युटली डी एनर्जाइज्ड, एंड मेरा वो संबंध बिगड़ रहा है, अब आपका वो संबंध नहीं है, वो मेरा संबंध है, उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, आप क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं
1: लेकिन
0: पड़ना
1: होता ये
0: चाहिए।
1: देखा गया है कि आप, किसी ने आपसे गुस्सा किया या आपके इंसल्ट की और आप वापस नहीं रिएक्ट कर पाए, आप अंदर कुलबुलाते रहते हैं, वो जो एक कुलबुलाहट है वो, तो मेरी एनर्जी डिस्चार्ज अगर हो जाती तो बेहतर था। कई बार मुझे ऐसा लगता है।
0: ये भी एक बिलीफ है, और समवेयर डाउन द लाइन मेडिकली उसको राइट भी प्रूफ कर देते हैं कि अंदर, यू नो, अंदर नहीं घुटना चाहिए, बाहर निकाल दो, लेकिन उस प्रोसेस में, क्योंकि कुछ समय हमने वो धारणा को लेकर देखा कि अंदर नहीं रखो बाहर निकाल दो, लेकिन फिर हम निकालते ही रहे हर टाइम, यू सी, देन वी नेवर रियली गॉट ओवर इट, तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी चीज को फोर्सफुली भी छोड़ना पड़ता
1: खत्म
0: है,
1: करना पड़ेगा।
0: आपको उसको 2 बार 4 बार शायद वो आपको अंदर तकलीफ देगी, 5वीं बार वो अंदर भी तकलीफ देना बंद कर देगी, लेकिन अगर हम अपने आप को हर टाइम ये कह देंगे नहीं वो अंदर तकलीफ देती है इससे अच्छा बाहर निकाल दो, व्हेन विल इट गेट ओवर, इट विल गो स्टेप वाइज ना, फर्स्ट आई स्टॉप्ड सेइंग इट, फर्स्ट आई स्टॉप्ड डूइंग इट, पहले हम फिजिकली किसी पर हाथ भी उठा देते थे, फर्स्ट अटेंशन हाथ नहीं उठना चाहिए, सेकेंड अटेंशन मुख से गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए, थर्ड अटेंशन गलत नहीं सोचना चाहिए, सो मे बी इफ आई कांट डू इट दिस वे देन आई विल हैव टू डू इट दिस वे, बट आई विल हैव टू डू इट, आई कांट गिव माई सेल्फ द एक्सक्यूज कि नहीं निकालना बहुत अच्छा है इसलिए करते रहो, दैट गेव अस मोर फ्रीडम कि गुस्सा कर दो, करने से आप हल्के हो जाओगे,
1: हाँ हल्के हो
0: किसको
1: जाए।
0: आज तक हल्का फील हुआ है गुस्सा होने के बाद, होते हैं इल्यूजन, आप गुस्सा कर दो आप हल्के, हल्का इज लाइटनेस, हल्का इज हैप्पीनेस, गुस्सा करने के बाद हल्का कब फील होता है, गुस्सा करने के बाद तो बहुत भारी लगता है।
1: बहुत बुरा लगता है एक्चुअली, हैवी और लाइट की बात
0: वही बुरा, मतलब दैट इज हैवीनेस ना, अपने आप से अंदर गिल्टी या अपने आप से क्या जरूरत थी, इसके बिना भी तो चल सकता था।
1: और कई बार हम कहते इतना गुस्सा कर देते तो था,
0: वो भी ज्यादा
1: चले गए,
0: वो भी
1: ज्यादा कह दिया मैंने कुछ, इतना नहीं कहना चाहिए था,
0: क्योंकि जब रिएक्ट करते हैं तब कोई कंट्रोल नहीं होता है, तब ज्यादा और कम उस टाइम याद रहने वाला नहीं है, तो वो अपने आप से एटलीस्ट इनिशियली जब हमने ट्राई किया तो इट वॉज लाइक अब मुझे गुस्सा नहीं करना है, अब ये कुछ भी बोले तो हो सकता है। शुरू शुरू में क्या हुआ कि ऊपर से नहीं कहा, अंदर बुरा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था, अभी भी कई बार ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो स्टेज तक तो पहुंच जाए कि बाहर से तो बोलना बंद करें, धीरे धीरे अंदर से भी बंद हो जाता है।
1: शिवानी यहाँ एक जो हमने पहले भी बात थोड़ी आधी छूटी थी ये कि जब अथॉरिटी की बात है कि अभी तक मैंने ये कहा कि मेरे लिए था कि भैया गुस्सा करूंगी तो काम होगा, नहीं तो काम नहीं करते हैं। लेकिन जब मैंने ये कोशिश की कि भैया गुस्सा नहीं करते हैं, प्यार से काम कराने की कोशिश करते हैं, तो प्यार से काम हुआ ही नहीं,
0: right.
1: तो मैंने बोला चलो काम ही नहीं होता, लेकिन ये भी तो नहीं होना
0: चाहिए, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीम लीडर या व्हाटएवर प्रोजेक्ट हेड, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी करनी है, या एज अ पेरेंट बच्चों के साथ, ये उस तरफ भी एप्लीकेबल है। लेकिन गुस्सा एंड डिसिप्लिन, यू नो कई लोग डिसिप्लिन के नाम पे बहुत गुस्सा कर देते हैं कि अगर मैंने, मुझे बच्चों को तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, वैसे ही उनकी हालत देख लो आज, इतना आपने डिसिप्लिन उस तरह से करने की कोशिश की, उनकी हालत आज देखिए क्या है, वो खुद ही इतना हॉलो हो गए हैं अंदर बिल्कुल। तो गुस्सा और डिसिप्लिन, लाइक वी डिस्कस्ड रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स, गुस्सा इज रिएक्शन, डिसिप्लिन इज रिस्पॉन्स। किसी से कोई गलती हो गई है, हम उस टाइम कैसे रिस्पॉन्ड करें, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल सामने से कोई चलते हुए आ रहा है, चलते चलते बीच में एक पत्थर था, उसका पैर उससे ठोकर लगा, वो गिर गया, चोट लगी, बहुत जोर से चोट लगी, आप एक पेरेंट हैं या आप एक टीम लीडर हैं, अब आपका क्या रिस्पॉन्स होगा?
1: डेफिनेटली विल गो, आई विल गो एंड फाइंड आउट कि ज्यादा चोट नहीं लगी हो, या यू नो उसको यही समझाऊंगा कि देख के चलिए, और चोट
0: पहले किस चीज को अटेंड करेंगे,
1: उसकी चोट
0: को आप उसे उठाएंगे, उसे हील करेंगे पहले, आप उसे वहां खड़े होकर लेक्चर नहीं देंगे कि चलने का सही तरीका कैसा होता है, क्योंकि अगर आप देंगे भी तो वो सुनने की हालत में नहीं, ही इज इन पेन, फर्स्ट ट्रीट द वुंड। लेकिन हम अगर लेक्चर दें, और लेक्चर देना भी अगर हम उसको और ही जोर से उसको पीटने लगे लाठी से, तुम ऐसे चले कैसे, तुम गलत चले कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गिरने की, What kind of disciplining is this? तो similarly एक company में या एक parent के साथ किसी ने कोई गलती कर दी है, वो व्यक्ति ने गलती करने के बाद he himself knows he's made a mistake, or the child himself knows I have not done well in my exams, but that time that person is already in pain, उसको अंदर already पता है कि मेरे से गलती हुई है, अब मुझे डांट पड़ने वाली है, now you know that fear element is there, he is in pain. You as a leader, you as a parent, what's your role right now? You have to remember that. हम वही कर रहे हैं कि दूसरा गिरा हुआ है, वो दर्द में है, हम वहां उसको खड़े होकर और पीटते हैं, तुमने ऐसा किया क्यों, तुमने ये किया क्यों, जब वो ठीक हो जाता है तब हम उसे कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जब वो दर्द में है हम उसे और पीटते हैं, उसे लेक्चर देते
1: हैं, जब वो उसे कुछ
0: समझ नहीं आ रहा, उस समय सुनने की समझने की स्थिति में नहीं है, और इसीलिए ज्यादातर लोग कहते हैं हम इनको इतना समझाते हैं लेकिन इन्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारा समझाने का समय गलत था, हम तब समझा रहे थे जब वो समझने वाली स्थिति में नहीं थे,
1: जब ऑलरेडी प्रॉब्लम,
0: जस्ट लुक एट द सिचुएशन ना, कि मेरे से कोई गलती होगी एंड माय बॉस जस्ट सेज नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, मैंने भी ऐसी गलतियां की थी, इट्स अंडरस्टैंडेबल, एंड ही टेक्स यू, ही जस्ट एक्सेप्ट्स यू, हील्स योर वुंड, लेकिन फिर वो हील होने के बाद फिर वो आपको बैठकर आपसे अच्छी तरह से बात करता, लेकिन उस टाइम वो भी सही बोलने की स्थिति में, क्योंकि वो रिएक्शन वाला मोड खत्म हो गया है, और आप भी उस टाइम अच्छी तरह से समझने की स्थिति में, और क्योंकि जब आप दर्द में थे तब उसने आपको सपोर्ट दी थी, वो आपकी बात और भी अच्छी तरह से सुनेगा, अगर आप उसे कुछ कहेंगे भी उसे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जब वो दर्द में है और तब आप उसको बोल रहे हैं, तब आपकी सही बात भी
1: समझ ही नहीं आएगी,
0: अच्छी नहीं लगेगी,
1: पहुंच ही नहीं पाएगी,
0: आप अच्छे नहीं लगेंगे उस टाइम, आप ही अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए एक बच्चे को वो पेरेंट उस टाइम अच्छा नहीं लग रहा होता। एक बच्चे के मार्क्स कम आए, एक बच्चा फेल हो जाए, मेजोरिटी ऑफ द चिल्ड्रन हु कमिट सुसाइड, व्हाई डू दे कमिट सुसाइड? बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेसिंग द पेरेंट, नॉट बिकॉज दे फेल्ड। तो रीजन कितना अलग है। आज अगर वो पेरेंट को, जिसका बच्चा चला गया, उसे ये पता चले कि मेरे डर के कारण वो बच्चे ने अपनी जीवन दे दी, वो पेरेंट क्या कहेगा? तुम वापस आ जाओ, मैं तुझे कभी गुस्सा नहीं करूंगा। नाउ व्हाट्स द यूज? दैट्स द पॉइंट। नाउ व्हाट कैन वी डू? वो बच्चे के अंदर पहले से वो विश्वास होना चाहिए था कि माय पेरेंट्स आर वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड दैट वुड हैव हैपेंड बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेरी कोई भी गलती होगी वो मुझे समझ लेंगे। एंड ऐसे पेरेंट्स हैं, वी हैव दैट काइंड ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, बट देन वी नीड दैट मोर नाउ।
1: यस,
0: गलतियां हो रही
1: हैं। चाइल्ड, वी हैव अ कॉलर, यू नो, वी हैड अ कॉलर, क्योंकि बहुत से लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, ईमेल्स आए हैं। इनफैक्ट हमारे साथ मुंबई से शिखा का ये फोन था और उनकी यही प्रॉब्लम जो आज हम पेरेंट की बात कर रहे हैं कि शी इज गॉट अ डॉटर हु इज 9 ईयर ओल्ड और वो ये कह रही थी कि शी इज अ वर्किंग वुमन, उनके मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी रह रहे हैं साथ में। मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप क्योंकि इतने साल, 10 साल शादी को भी हो गए हैं तो ठीक ठाक है पर कोल्ड है। बेटी को ऑलमोस्ट मदर इन लॉ ने वाला बिकॉज शी इज अ वर्किंग वुमन।
0: ओके,
1: एंड अब जब 9 साल की बच्ची हो गई है, देन शी सेज, शिखा सेज कि अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि बच्चा तो मेरे हाथ से चला गया है क्योंकि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन मी my daughter and now I want to develop this relationship and she's not interested. Suddenly she has become so rude. मेरी mother-in-law के साथ जो मेरा relationship होता है उसका response मेरी बेटी के साथ मुझे दिखने लगता है।
0: True.
1: और वो मेरे साथ इतनी बदतमीज, इतनी कुछ, अब मैं इतनी depression में चली गई हूँ। She was literally crying, you know, when she called up and she said कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि मेरा बच्चा मेरा अपना ही नहीं रहा।
0: True.
1: और नौकरी करना भी मेरी मजबूरी थी क्योंकि you know, पूरा financial सब कुछ depend करता था बाकी सारी चीजें। तो अब मैं क्या करूं, कैसे वो रिलेशनशिप दोबारा डेवलप करूं?
0: फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर खुद डिप्रेशन में है, मतलब खुद बहुत लो फील कर रहे हैं, दूसरे को हील नहीं कर पाएंगे। दूसरे को प्यार देना है वो दे नहीं पाएंगे क्योंकि खुद अंदर नफरत भरी हुई है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन। जो दूसरे को देना चाहते हो वो पहले खुद अपने अंदर भरा हुआ होना चाहिए। अब इनके केस में शायद जो हो रहा है, फर्स्ट फैक्टर इज कि द मदर इन लॉ इज कंट्रोलिंग द चाइल्ड, यू नो दैट समवेयर इन द सबकॉन्शियस दैट इज क्रिएटिंग अ बिगर प्रॉब्लम। यू नो, वो एक एलिमेंट जो बीच में आ रहा है कि मेरी बेटी मेरा ना सुनने के बजाय यू नो उनका सुन रही है।
1: लेकिन बेटी के लिए भी बिल्कुल जायज है कि वो बचपन से जो करता
0: है, तो वो एक नेचुरल बॉन्डिंग है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो वो तो एक नेचुरल बॉन्डिंग थी, लेकिन इनको जो अपने आप से सेल्फ टॉक करके अपने आप को वो राइट थिंकिंग पैटर्न पे लाना पड़ेगा कि फाइनली शी इज हर ग्रैंड मदर, she's done so much for her, after all I could work only because she was there. To mera to matlab jaise I should be very grateful to her ki usne unhone itni achhi parvarish karke aaj ye missing element hai aur isiliye bacche bahut zyada lonely feel karte hain.
1: But you know what she's saying actually ki wo unki jo parvarish hai wo unhone apne beton ki bhi parvarish koi bahut achhi nahi kari thi. No, no, but that's again she says ki she was an intelligent girl. She says ki wo bacche ko bhi jo kar rahi hai kyunki ab pattern change ho gaya hai, khane ka, peene ka, पढ़ाने का पूरा तरीका बदल गया है। अब जब मैं उसे अपने बच्चे को अपने हिसाब से करना चाहती हूँ जो कि आज के परिवेश में देखते हुए सही है, तो she doesn't want that.
0: शिखा को क्या करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि अभी वो शायद subtly, subconsciously वो बच्चे को अपनी ग्रैंड मदर से छीनने की कोशिश कर रही होगी। एंड सिंपल बात यह है कि एक नेगेटिव
1: थॉट प्रोसेस है,
0: एक पॉजिटिव रिजल्ट जेनरेट नहीं कर सकता। अगर हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए उसकी इनपुट भी पॉजिटिव होगी। नेगेटिव इनपुट दे, पॉजिटिव नेगेटिव इनपुट डालें और पॉजिटिव आउटपुट हो, इम्पॉसिबल। तो जहां उनका ये थॉट है वो परवरिश गलत थी, मुझे उसको उससे अब ले लेना है, शी शुड कम अंडर माई कंट्रोल, शी शुड नॉट लिसन टू हर, शी शुड लिसन टू मी, all the thoughts are going on a different track. तो obviously जब हम negative energy transmit कर रहे हैं इतनी ज्यादा, तो वो बच्चा मेरे करीब आने की बजाय
1: दूर, बहुत दूर हो जाए,
0: और भी दूर, और कहीं ऐसा ना हो कि वो शायद बहुत ज्यादा दूर हो जाए, because I'm sending only negative energy.
1: So how, what should
0: negative energy उसको repel करेगी ना? See, negative energy always takes me away from a person. And इस process में वो अपनी mother-in-law से भी बहुत दूर हो जाएंगी, अपने husband से भी हो सकता है कि distance हो जाए, बच्चे से definitely distance हो जाएंगी. तो thought process को एक-एक जो इन्होंने ये thought ली, इसको थोड़ा सा check करें. First, मेरी grandmother, मतलब मेरी mother-in-law ने जो किया, बहुत अच्छा किया. I am grateful to her and actually go and express your gratitude. दूसरा, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी परवरिश की होगी, उसमें वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और आज मेरी बेटी जो है वो उनकी वजह से उस तरह से बनी है. थर्ड शी कैन डू इज गो एंड डिस्कस विद हर कि बेबी विद द चेंजिंग टाइम्स डू यू फील इट इज ओके, क्योंकि इट्स नॉट राइट कि जिसने इतनी मेहनत की थी आप जाके उससे कोई चीज को छीन लो. वो बच्चा भी आपके साथ वो रैपो नहीं बिल्ड करेगा. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप एक टीम बनाएं, आप दोनों मिलकर अब उसकी परवरिश करें और वो बच्चे को इतना वो स्नेह दे, इतना प्यार दे, तो वो ऑटोमेटिकली, मतलब मदर एंड चाइल्ड के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. दिस इज नॉट एन ऑफिस रिलेशनशिप, तो इट इज जस्ट वन, शी इज जस्ट वन स्टेप अवे. सो शी शुड टॉक टू हर मदर इन लॉ एंड मिलकर वो जो उनको चेंजेस लाने हैं परवरिश में, उनके साथ मिलकर करे, उनसे दूर होकर ना करे. तब वो करना बहुत ईजी हो जाएगा एंड शील इंजॉय द प्रोसेस एंड ऑल थ्री ऑफ देम will come closer. And in the way she's doing it right now, all three of them are going to go absolutely away. And just give lot of love. Lot of love internally. And lot of love internally tab diya jata hai jab koi negative thought nahi hogi. Hum kehte to hai, matlab no mother will say ke I don't love my child. Lekin ye jo sari negative thoughts hai, ye usme ek leakage hai. To jitna ye hat jayengi, aapka jo pyar hai, wo undiluted, you know, एकदम अनअडल्ट्रेटेड है, एब्सोल्युटली प्योर एंड सेल्फलेस, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है.
1: बिल्कुल. और बहुत यू नो, बिकॉज इनकी प्रॉब्लम एक बड़ी जेन्युइन सी प्रॉब्लम लग रही थी, लेकिन इसको इस तरह से इंटरप्रेट करके, आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक यू माइट से कि किसी यू नो लाइक मदर इन लॉ से, या अगर आगे चल के ये भी हो सकता था कि सेपरेट हो जाएं, क्योंकि यही प्रोसेस रहते होंगे.
0: बट देन दैट्स डैमेजिंग ना.
1: यस.
0: आज एक, और इसीलिए इसी प्रोसेस की वजह से आज हम ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में आ गए. हमने ये सोचा कि न्यूक्लियर फैमिली इज बेटर, नाउ वी रियलाइज नो, दैट्स ऑल्सो a failure. Because everything that was there was for a purpose. Lekin humne uske benefits dekhne ki bajaye humne socha nahi hum ab hum apne aap hi paal lenge na, hum akele reh lenge na, inki interference ko kaun tolerate karega.
1: Definitely. Aur ek bar phir humne thought power ki jo power hai uska example dekha, samne aaya ki jis cheez ko उनके लिए कितनी बड़ी समस्या है और कितना जेन्युइन, किसी भी काउंसलर के पास जाएंगे तो उन्हें भी वो जेन्युइन ही लगेगा, लेकिन वो जो नेगेटिविटी इनके अंदर खुद ही जनरेट,
0: वो खुद ही उसको पॉजिटिव कर लेंगे,
1: कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है. तो ससे शिवानी, आज एक बार फिर एंगर को, हमने एंगर के एस्पेक्ट्स को लेने की कोशिश की और ये बात क्लियर होती जा रही है कंटिन्यूअसली, यू नो, कि हमारे रॉन्ग बिलीव्स जो हैं वो गलत थॉट्स जनरेट करते हैं, गलत एनर्जी जनरेट करते हैं, एंड नेगेटिव एनर्जी एक्चुअली रिपेयर्स, एंड देन पॉजिटिव थॉट्स विल क्रिएट पॉजिटिव डेस्टिनी. थैंक यू सो मच. और आपको बता दें कि देखिए, जैसे कितने सारे हमारे पास लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, हम उन्हें प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करते हैं, तो आपका भी स्वागत करते हैं. और कोशिश हम ये करें हर रोज, जैसा कि सिस्टर शिवानी बता रही हैं, कि पॉजिटिव थॉट्स को ही जनरेट करने की कोशिश करें. इसके लिए यही जरूरी है कि अपने बिलीव्स, अपनी मान्यताओं को सही रखें. आप हमें कॉल कैसे कर सकते हैं, फोन कीजिए 9873 666555 पर, और अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. तो फिर अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी फिर आपके साथ होगा, लेकिन फिलहाल दीजिए इजाजत. नमस्कार.